आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की चौथी तिथि। तदनुसार 25 जून सन 2026। इस समय सवेरे की 5:57 हुए हैं। हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्स पर। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। यह प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद

0: भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमरीका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुने श्री रामचरितमानस। आज आप सुनेंगे एपिसोड संख्या 37। मुख्य गायक स्वर है मिताली सिंह का। संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

पार्वती से विवाह करने की भगवान शिव की सहमति पाकर देवगण पर्वतराज हिमाचल के पास पहुंचे। महादेव के प्रताप का प्रभाव विचार कर अति प्रफुल्लित मन से उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला भेजा और शुभ दिन, नक्षत्र तथा शुभ घड़ी आदि विचार कर विवाह लग्न निश्चित करने की विनती की। लग्न पत्रिका तैयार हुई तो उसे सप्तऋषियों के हाथ ब्रह्मा को भिजवाई, जिसे पढ़कर ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। इधर शिव की बारात में जाने के लिए देवतागण अपने भांति भांति के विमान सजाने लगे। शिवजी के सेवकों ने स्वामी का श्रृंगार करना आरंभ किया। जड़ों का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर चढ़ाया गया। सांपों के ही कुंडल और कंकण, शरीर पर विभूति का लेप और वस्त्र के पर व्याघ्र चर्म, सुंदर भाल पर चंद्रमा सुशोभित हुए, सिर पर गंगावतरण, तीन नेत्र, सर्पों का यज्ञोपवीत, गले में विष तथा छाती पर नरमुंडों की माला, ऐसा भयावह और अशुभ दिखने वाला वेश था मंगलकारी महादेव का।

अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस, एपिसोड संख्या थी 37। मुख्य गायक स्वर था मिताली सिंह का। आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। सुविचार। जिंदगी एक शिक्षक की तरह होती है जो समय समय पर सबकी परीक्षा लेती है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। वंदन कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं जगजीत सिंह का गाया ये भक्ति गीत।

अनूप जलोटा और साथियों का गाया ये भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे। वंदन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगली प्रस्तुति सुरेश वाडकर और सीमा मिश्रा की आवाज़ों में।

ये भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। वंदन कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

इस भक्ति गीत के साथ आज का वंदन कार्यक्रम बस यहीं तक। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। आइए सुनते हैं अदालत फिल्म का गीत। गुलशन बावरा के बोल है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

आन मिलो सजना, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में साजन फिल्म का गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।
1: रेशम की डोरी

इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम बस यहीं तक। आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है, मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त सोनिया। कार्यक्रम में होती है कुछ बातें और सुनाए जाते हैं आपको प्यारे प्यारे से गीत, और कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आपके लिए ये प्यारा सा गीत।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। और दोस्तों, हर सुबह हम लेकर आते हैं कुछ प्यारी बातें, कुछ पॉजिटिव थॉट्स और आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। और कहते भी है ना कि हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है। जो भी हमने कल किया है और जो हम कर नहीं पाए उसके लिए आगे बढ़ें, और जो कल कर चुके हैं या नहीं कर पाए उसको भी छोड़ दीजिए, बस आगे बढ़ते रहिए और इस खूबसूरत सुबह का स्वागत कीजिए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ।

दोस्तों, सुबह का समय सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होता, बल्कि हमारे विचारों की भी शुरुआत होती है। अगर सुबह की पहली सोच अच्छी हो तो पूरा दिन बेहतर महसूस होता है। और एक छोटी सी बात ये भी कहना चाहेंगे कि खुश रहने के लिए बड़ी वजहों की ज़रूरत नहीं होती। छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीखिए, फिर देखिए।

दोस्तों, ज़िंदगी में हमेशा सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता, लेकिन हमारा नज़रिया कैसा होगा ये हमारे हाथ में होता है। क्योंकि अगर हमें किसी भी काम में असफलता मिलती है तो हमारा जो नज़रिया है वो नकारात्मक हो जाता है, और एक बार से ज़्यादा अगर कुछ किसी काम में हमें असफलता मिलती है तो वो नज़रिया वो बढ़ता ही रहता है नकारात्मकता की तरफ। तो लेकिन हमें ये नहीं सोचना है, क्योंकि मुश्किल समय भी हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। अगर हम असफलता की स्थिति में या ऐसी स्थिति जो मुश्किल समय हो उसमें पॉजिटिव थॉट रखें, सकारात्मक सोच रखेंगे, तो शायद हमें आगे बढ़ने में या सफल होने में ज़्यादा सुविधा होगी।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त सोनिया। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि सुबह की शुरुआत अगर मुस्कान के साथ हो तो पूरा दिन कितना खूबसूरत लगने लगता है? जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आज आप किसी भी एक व्यक्ति की तारीफ जरूर कीजिए, या फिर कोई आपके साथ है, आपके साथ काम कर रहा है और उसने आपकी कोई हेल्प की है तो थैंक यू ज़रूर कीजिए। किसी अपने का हाल ज़रूर पूछिए, क्योंकि ये छोटी सी कोशिश रिश्तों में मिठास भर देती है।

तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज के दिन विशेष की। आज की सुबह एक खास आध्यात्मिक भाव लेकर आई है, क्योंकि आज है निर्जला एकादशी का पावन अवसर। दोस्तों भारतीय परंपराओं में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। निर्जला एकादशी को साल की प्रमुख एकादशियों में से एक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, भक्ति, ध्यान और सेवा का विशेष महत्व बताया गया है और कहा गया है कि व्रत का उद्देश्य केवल उपवास करना नहीं बल्कि अपने मन और विचारों को भी शुद्ध करना होता है। संयम, श्रद्धा और आत्मा

दोस्तों, हम बात कर रहे थे निर्जला एकादशी की। तो इस दिन लोग भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और ज़रूरतमंदों की सहायता करने का संकल्प लेते हैं। गर्मी के मौसम में जल का भी बहुत महत्व है, इसीलिए आज के दिन जल सेवा और दान को भी पुण्य का कार्य माना जाता है। दोस्तों, त्यौहार और पर्व हमें अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं और याद दिलाते हैं कि जीवन में केवल भौतिक चीज़ें ही नहीं बल्कि शांति, करुणा और अच्छे कर्म भी जरूरी है। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।

दोस्तों समय हो गया है कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त करने का। तो दोस्तों मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ कीजिए। इसी के साथ मुझे यानी सोनिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय सवेरे के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे, पहले हिंदी उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय

0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
2: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
3: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभीडांग के समीप ही एक पड़ाव चयनित किया गया है।
2: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी, नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमरीकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमरीकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे।

0: वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
1: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे इस समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देशबंधु की खबर है कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को 1,15,00,000 डॉलर चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है मध्य प्रदेश पहुंचा मॉनसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30

सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन। जिंदगी कभी मुश्किल कभी आसान होती है, कभी ये उफ तो कभी वाह होती है। न भूलना कभी इसकी मुस्कुराहट को दोस्तों, क्योंकि इससे हर मुश्किल आसान होती है। तो मुस्कुराते हुए कीजिए अपने दिन की शुरुआत, और इस सकारात्मक संदेश के साथ और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ स्वागत करते हैं हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं का आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर।

0: जी दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र और मैं हूं आपके आज के होस्ट मनीषा जोशी बोहरा और मेरे साथ हैं
1: हेमलता।
0: और इसके साथ ही दोस्तों, समय हो गया है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार का। प्रोग्राम वही जिसमें हम आपको रूबरू करवाते हैं कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ। और इसके साथ ही आपको रखते हैं अपडेट, लेकिन दोस्तों उससे पहले हो जाए टीम का परिचय जो निर्बाध रूप से आप तक सभी प्रोग्राम्स पहुंचाती है। ट्रांसमीटर पर हमारा साथ दे रहे हैं नरेंद्र सिंह राठौड़। साथ ही ट्रांसमीटर पर हमारा साथ दे रहे हैं प्रकाश पंवार। कंट्रोल रूम से हमारे साथ हैं प्रवीण कुमार। कंसोल पर हमारा साथ दे रही हैं सोनिया देवड़ा। और एफएम से हमारे साथ हैं नेमी। दोस्तों, कार्यक्रम के सहयोग एवं प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश लामरोड़।

योगदान होता है। उनका भी त्याग हमारी इन उपलब्धियों में निहित होता है। वो कहते हैं ना, समंदर में भले ही पानी अपार है, मगर सच तो यही है कि वो नदियों का उधार है। तो हमें सदैव उन सभी का कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए और हमारी सफलता के लिए सदा हमारे साथ खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि सच जानिए, उन सब के बगैर हम अधूरे होते हैं।

जी दोस्तों नमस्कार। प्रोग्राम में हम बातें करते हैं कुछ मोटिवेशनल, कुछ जानकारियों से सजे इस प्रोग्राम में। तो आज की हमारी मोटिवेशनल जो कहानी है वो है बांस का पेड़। दोस्तों धैर्य और मेहनत की कहानी है। एक किसान अपने खेत में बांस का बीज बोता है, वो रोज उसे पानी देता है, खाद डालता है और साथ ही उसकी पूरी देखभाल करता है। एक साल बीत जाता है लेकिन जमीन से कुछ भी नहीं निकलता। किसान फिर भी मेहनत नहीं छोड़ता और अपनी मेहनत को जारी रखता है। दूसरा साल बीतता है, फिर भी कोई पौधा दिखाई नहीं देता है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। तीसरा और चौथा साल भी बीत जाता है, फिर भी किसान हार नहीं मानता है।

0: और वो हर दिन उसी लगन से बीज की देखभाल करता रहता है। पांचवें साल अचानक जमीन से एक छोटा सा बांस का पौधा निकलता है और फिर कुछ ही महीनों में वो 80 से 90 फीट तक ऊंचा हो जाता है। लोग आश्चर्य से देखने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि किसान से वो पूछते हैं कि वो ये सब इतना जल्दी कैसे बढ़ गया, ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया। तो किसान मुस्कुरा देता है कि ये 5 महीने नहीं बल्कि 5 सालों में बड़ा हुआ है। इन 5 सालों में इसकी जड़ें जमीन के अंदर मजबूत हो रही थी।
1: जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख ये मिलती है कि जीवन में भी कई बार हमारी मेहनत का परिणाम तुरंत हमें नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वास्तव में हमारी नींव मजबूत हो रही होती है। इसलिए कठिन समय में धैर्य रखें और मेहनत करते रहें। जब सफलता आएगी तो वह बांस के पेड़ की तरह तेजी से हमें दिखाई देगी। तो ये हमें सीख दे रही है कि धीरे धीरे की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह एक दिन बड़ी सफलता का आधार बनती है।

0: ना राज है जिंदगी, ना नाराज है जिंदगी, बस जो है वो आज है जिंदगी। और आज की जिंदगी ये कह रही है कि इतनी उमस और गर्मी के बाद अब मन कर रहा है कि बागों में फिर से बहार आ जाए और हर मन गार्डन की तरह खिल जाए। और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद आज हमारे मन की बात ईश्वर सुनने वाला है, मौसम बदलने वाला है। क्या लगता है?
1: बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज शायद इंद्रदेव हम पर मेहरबान हो जाएं और हम इतने दिनों से जिस चीज़ के लिए तड़प रहे हैं वो हमें मिल जाए। बस बारिश का आज सुकून हो जाए और बस बारिश बरस जाए।
0: देखो बादल तो घिर आए हैं, देखते हैं कि अब ये जो है वो कहाँ तक पहुँचती है हमारी गुजारिश। फिलहाल हम सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

उसकी मांगे ज्यों ज्यों पूरी की जाती है त्यों त्यों वह और गर्जना करता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को सीमित रखते हुए जीवन का असली मजा लेने में ही हमारी भलाई है। और दोस्तों, हम भी यही कहेंगे कि आज जितना भी अगर बादल बरसता है तो बस बाहें फैलाकर मानसून का वेलकम कीजिए, और जितना भी बरसता है उसमें मजे लीजिए।

आकाशवाणी का ये जोधपुर केंद्र है। इस समय सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर खंडीप में चल रहा किसानों का धरना सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की पांचों विद्युत कंपनियों में विभिन्न संवर्गों के कुल 2005 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। और निर्जला एकादशी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही वे जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास और विभिन्न सरकारी नौकरियों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री की इस प्रस्तावित यात्रा के संबंध में तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कल जयपुर में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम से जुड़े सुरक्षा मानकों और अन्य सभी व्यवस्थाओं को समय रहते पूरा किया जाए। इस ऐतिहासिक आयोजन को विकास और रोजगार के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक आमजन और जनप्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से मुख्य समारोह से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कुशल क्रियान्वयन के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग और पोर्टल पर आंकड़ों को समय पर अपडेट करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे परियोजनाओं में देरी और लागत को बढ़ने से रोका जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सक्रिय शासन और परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सड़क, बिजली, औद्योगिक कॉरिडोर और मेट्रो रेल क्षेत्रों से जुड़ी 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। 4 राज्यों में फैली इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए है। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-2026 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 38 सालों से केंद्रीय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता देशभर के 200 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई थी। युवा संसद का उद्देश्य युवा पीढ़ी में आत्म अनुशासन, विभिन्न विचारों के प्रति सहिष्णुता, विचारों की सही अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक जीवन शैली के अन्य गुणों को विकसित करना है। करौली जिले के खंडीप में पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर चल रहा किसानों का धरना कल शाम समाप्त हो गया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों से समझाइश की। डॉ मीणा ने किसानों को आश्वस्त किया कि आगामी 6 दिनों के भीतर पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ दिया जाएगा। मंत्री के इस आश्वासन के बाद किसान नेताओं ने आंदोलन को फिलहाल स्थगित करते हुए धरना समाप्त करने की घोषणा की। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे करौली संवाददाता।

0: आंचना बांध के पानी को लेकर जारी गतिरोध समाप्त हो गया है। कैचमेंट क्षेत्र के 39 गांवों को प्राथमिकता से पानी देने की मांग को लेकर गुडला पांचना संघर्ष समिति बांध पर धरना दे रही थी, जबकि कमांड क्षेत्र में नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर किसान खंडीप में आंदोलनरत थे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा के आश्वासन के बाद दोनों पक्षों ने अपना आंदोलन समाप्त और स्थगित कर दिया। अब प्रशासन किसानों के बीच समन्वय बनाकर स्थायी समाधान की दिशा में प्रयास करेगा। मांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने प्रदेश की पांचों विद्युत कंपनियों में विभिन्न संवर्गों के कुल 2005 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ लेखाकार और कनिष्ठ सहायक सहित अन्य पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि हाल ही में टेक्नीशियन थर्ड के 2163 पदों का अंतिम परिणाम जारी करने के तुरंत बाद ये भर्ती निकाली गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और ये भर्ती बजट घोषणा के अनुरूप की जा रही है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परीक्षा परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ये नतीजे जारी करेंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों से सीधा संवाद भी करेंगे। परीक्षा के नतीजे विद्यार्थी विभाग की वेबसाइट और अन्य निर्धारित माध्यमों से ऑनलाइन देख सकेंगे। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अनुपालना को लेकर जयपुर में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को आगामी 31 मार्च तक राजस्थान को स्वच्छता के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर लाने के लक्ष्य के साथ काम करने के निर्देश दिए। श्री दिलावर ने आगामी 31 जुलाई तक 4000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित करने और पुराने कचरे के ढेरों को पूरी तरह हटाने को कहा। साथ ही 31 अक्टूबर तक 1600 ग्राम पंचायतों में कचरे को अलग करने के लिए 4-स्तरीय व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसका मंत्री खुद निरीक्षण करेंगे। उन्होंने वर्ष 2029 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 100% स्वच्छता का लक्ष्य रखने और विलायती बबूल उन्मूलन अभियान के लिए सभी विभागों को मिलकर संयुक्त कार्य योजना बनाने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सवाई माधोपुर पहुंचेंगे। वे कलेक्ट्रेट परिसर में नवनिर्मित अभियोजन भवन के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। समारोह में कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म भी मौजूद रहेंगे। निर्जला एकादशी का पर्व आज प्रदेशभर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। श्रद्धालु आज निर्जला व्रत रखकर घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में किला स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं। इस अवसर पर ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया गया है। सवाईमाधोपुर में विभिन्न संगठनों की ओर से लोगों के लिए ठंडे पदार्थ पिलाने की व्यवस्था की गई है। अजमेर में तीर्थराज पुष्कर में विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिरों में भजन कीर्तन के आयोजन हो रहे हैं।
2: प्रातःकाल से ही श्रद्धालु पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और दान पुण्य के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। आकाशवाणी समाचार अजमेर।
1: उधर पाली जिला मुख्यालय स्थित प्राचीन विष्णु मंदिर में भगवान का 450 किलो आम से विशेष श्रृंगार किया गया है। जयपुर नगर निगम आगामी दिनों में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए फायर एनओसी को लेकर लगातार सर्वे और जागरूकता अभियान चला रहा है। इसके तहत कल नगम की टीम ने शहर के विभिन्न तरह के 74 भवनों का निरीक्षण किया और कमियां पाए जाने पर 53 भवन

0: भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर खंडीप में चल रहा किसानों का धरना सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की पांचों विद्युत कंपनियों में विभिन्न संवर्गों के कुल 2005 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। और निर्जला एकादशी का पर्व आज प्रदेशभर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: न्यूज ब्रेक के बाद स्वागत है आपका फिर से मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के दिन के बारे में, कि आज के दिन के इतिहास में क्या क्या छिपा है। दोस्तों, 1975 में आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी और ये 21 महीने तक चला था, जिसके दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था और कई विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। भारत सरकार ने इस घटना की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है।
2: आज ही के दिन 1950 में शुरू हुआ था कोरिया युद्ध। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया, जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष छिड़ गया था।
1: दोस्तों, 1932 में आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के प्रतिष्ठित लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला आधिकारिक टेस्ट मैच खेलकर अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था।
2: और दोस्तों, आज का दिन क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है हमारे देश के लिए। बिल्कुल आज ही का वो दिन था 1983 में, जब भारतीय क्रिकेट टीम ने कपिल देव की कप्तानी में लॉर्ड्स के मैदान पर वेस्टइंडीज को 43 रनों से हराकर अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था और हम सभी को गौरवान्वित किया था।
3: इंडिया इन डीप ट्रबल नाउ, हैविंग लॉस्ट टू मैचेस इन अ रो।

0: दोस्तों, आज 25 जून का दिन है और भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में नामित किया है। ये दिन 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। सरकार द्वारा इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं को आपातकाल के दौरान संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के हुए दमन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 25 जून 1975 की रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 का उपयोग करके देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। इस दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए थे और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया था। यह दिन उन लोगों के संघर्ष और बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने आपातकाल के दौरान अमानवीय यातनाएं सही और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया।
1: और दोस्तों, इसी के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस भी है। दोस्तों, समुद्र में काम करने वाले नाविकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए हर साल 25 जून को ये दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जो है वो हर साल 25 जून को इसीलिए मनाते हैं कि ये दिन जो है वो वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में नाविकों के अद्वितीय योगदान को और उनके द्वारा उठाए जाने वाले जोखिमों को सम्मान दिला सके, उनको समर्पित किया जा सके। और ये दिवस इस दिवस की जो स्थापना है वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO द्वारा वर्ष 2010 में मनीला में हुए एक सम्मेलन के दौरान की गई थी। और इस वर्ष की जो थीम रखी गई है वो है विश्व व्यापार का संचालन, जोखिमों को उठाना। दोस्तों, इसका उद्देश्य संघर्षग्रस्त और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले नाविकों के जीवन की कठिनाइयों और दबावों को उजागर करना है। और साथ ही दोस्तों, देखा जाए तो विश्व का लगभग 90% जो व्यापार है वो समुद्र के रास्ते जहाज़ों द्वारा किया जाता है। और ये दिवस उन सभी नाविकों को धन्यवाद देने का अवसर है जो हमारे दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं को सुरक्षित रूप से पहुंचाने के लिए अपने घरों से दूर लंबा समय बिताते हैं।

0: बिल्कुल दोस्तों, जीवन की ये धारा चलती ही रहती है और हमें भी उसके साथ चलना होता है, रुकना बिल्कुल नहीं होता। लेकिन हमारा ये जो जीवन है, ये चलते चलते कहीं नीरस ना हो जाए, इसीलिए हमारे जीवन में, हमारे समाज में हम कई तरह के व्रत, उत्सव और त्यौहार मनाते हैं। और कई सारे ये जो त्यौहार हैं, ये हमारे एक सी चलती हुई ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत आनंद के पल भर देते हैं।
1: जी दोस्तों, बिल्कुल। और आज का दिन इसीलिए खास है कि आज है निर्जला एकादशी, जो कि हमारे संपूर्ण भारत में मनाई जाती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस दिन का जो व्रत होता है वो सभी 24 एकादशियों के व्रत के समान फलदायी होता है। यानी कि ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति वर्ष भर की एकादशियों का व्रत नहीं रख पाता है, वो केवल इस निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उपवास रखा जाता है। आज का दिन यानी कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हम निर्जला एकादशी मनाते हैं। दोस्तों, ये जो व्रत उपवास किया जाता है इसके पीछे एक कथा है, जो अगर आप सुनते हैं तो आपको इसमें और भी गहरी आस्था बढ़ जाती है आपकी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भीम जो थे वो, उनको भोजन बहुत प्रिय था, तो उनके चारों भाई और माता कुंती वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों का व्रत रखते थे, लेकिन भीम, उनके लिए बार बार उपवास करना कठिन था। तो वे अपने गुरु वेदव्यास जी से कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहता हूँ, परंतु बार बार भूखा नहीं रह सकता। तो गुरुदेव, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाए। तब महर्षि वेदव्यास उन्हें कहते हैं कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो निर्जला व्रत रखते हैं वे सबसे ऊपर हैं और उन्हें फिर पूरे वर्ष भर व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। बस ये एक दिन का उपवास जो है वो उन्हें बिना जल ग्रहण किए, बिना अन्न खाए वे अगर करते हैं तो उन्हें सभी एकादशियों का समान फल प्राप्त हो जाता है। तो भीम श्रद्धापूर्वक

0: ये उपवास रखते हैं और उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और बस इसी दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और काफ़ी सारे दान पुण्य किए जाते हैं, जिनमें जल का दान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
1: और दोस्तों नमस्कार, कार्यक्रम में अब बात कर लेते हैं उस रोमांचक खेल की। जी हाँ, फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो कि इन दिनों चर्चा का विषय है और अब वो अपने पूरे चरम पर पहुंच चुका है। बात करें कल हुए मैचों की तो ग्रुप एल के मुकाबले में इंग्लैंड और घाना के बीच मैच जो हुआ वो ड्रॉ रहा। दोनों टीमों के बीच 15 साल बाद मैच खेला गया। दोनों टीमों के बीच कुल 2 मैच खेले गए और दोनों ही ड्रॉ रहीं। वहीं ग्रुप एल के ही मैच में क्रोएशिया टीम ने पनामा को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट में पहला मैच जीत लिया है और विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट राउंड में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा। क्रोएशिया के लिए यह जीत इसलिए भी खास है दोस्तों, क्योंकि उसके कप्तान लुका मॉड्रिक का यह 200वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। इस मैच में एंटे ने खेल के 54वें मिनट में जोसेफ स्टेनिसिक के घुमावदार क्रॉस पर गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया और यह गोल आखिर में निर्णायक साबित हुआ और क्रोएशिया को 3 अहम अंक मिले इस गोल के माध्यम से। इसके साथ ही क्रोएशिया टीम ने इस विश्व कप में अपनी पहली जीत हासिल की।

0: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता का महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहम्मद शकील उप जिला अस्पताल सुमेरपुर से बोल रहा हूँ। हर दंपति का सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बांसवन कई दंपति का सपना साकार नहीं होने देता। इनफर्टिलिटी का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयास के बावजूद गर्भ धारण न होना। यह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखिए, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला ही नहीं बल्कि पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF तक उपलब्ध हैं। अब समय है कि हम इस विषय पर बिना संकोच खुलकर बात करें और डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन लें। धन्यवाद।
0: गुफिक बायोसाइंसेस के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के सेगमेंट के बारे में। आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन हमारा सेगमेंट रहता है हमारा पर्यावरण, और आज हम बात करेंगे नियाग्रा जलप्रपात की। दोस्तों, नियाग्रा फॉल्स विश्व के सबसे प्रसिद्ध और मनमोहक जलप्रपातों में से एक है। ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स की सीमा पर स्थित है। दोस्तों, नियाग्रा जो है वो वास्तव में 3 जलप्रपातों का समूह है, एक हॉर्स शू फॉल्स, अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडल वेल फॉल्स। और इसमें से हॉर्स शू फॉल्स जो है वो सबसे बड़ा है और सबसे अधिक जल प्रवाह वाला जलप्रपात है। ये जलप्रपात न्यूयॉर्क के बफेलो से 27 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में और कनाडा के टोरंटो से 120 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। नियाग्रा नदी पर स्थित ये जलप्रपात लगभग 12,000 वर्ष पहले हिमयुग के अंत में ग्लेशियर्स के पिघलने से बना था, और इसकी जो ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 51 मीटर है, और हर सेकंड लाखों लीटर पानी इसकी चट्टानों से नीचे गिरता है, और गिरते हुए पानी की जो गर्जना है वो कई किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है।
3: और दोस्तों, इस नियाग्रा जलप्रपात से जुड़ी अनेक रोचक कहानियां भी प्रसिद्ध हैं। वर्ष 1901 में 63 वर्षीय शिक्षिका एनी इट्सो टाइलर एक विशेष बैरल में बैठकर जलप्रपात के ऊपर से नीचे गिरी और जीवित बच गई। वे ऐसा करने वाली पहली व्यक्ति थी। इसके बाद भी कई साहसी लोगों ने इसे जोखिम भरे कारनामे करने का प्रयास किया। यह जलप्रपात केवल प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र ही नहीं है दोस्तों, बल्कि जल विद्युत उत्पादन का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ स्थित विद्युत परियोजनाएं कनाडा और अमेरिका के लाखों घरों को बिजली उपलब्ध कराती हैं, और रात के समय रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता नियाग्रा जलप्रपात और भी आकर्षक दिखाई देता है। विशेष अवसरों पर यहाँ शानदार आतिशबाजी भी की जाती है। हर वर्ष करोड़ों पर्यटक नौका यात्राओं, अवलोकन टावरों और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने यहाँ पहुँचते हैं। अपनी अद्भुत शक्ति, प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक महत्व और रोमांचक कथाओं के कारण नियाग्रा जलप्रपात आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। यह प्रकृति की विराट शक्ति और सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है।

0: दोस्तों, वैसे तो हमें हर मौसम में कई तरह की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मगर गर्मी की अगर बात करें तो गर्मी में भी हमें कई तरह की ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ता है और जिनसे हम पूरी गर्मी परेशान रहते हैं। और उनमें से एक सबसे बड़ी समस्या की अगर बात करें तो वो है हमारे बालों की समस्या। जी हाँ दोस्तों, गर्मी में बालों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी में उमस के कारण पसीना भी खूब आता है और उस वजह से हमारे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और एक बहुत गंभीर समस्या के रूप में ये हमारे सामने आती है।
1: जी दोस्तों, बिल्कुल इसीलिए हमने आज काम की बात यही रखी है कि हम गर्मियों में बालों की देखभाल कैसे करें। दोस्तों, गर्मियों में तेज़ धूप, पसीना, धूल और प्रदूषण के कारण बाल रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। तो बालों को स्वस्थ रखने के लिए हम निम्न बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे बालों को साफ रखें। पसीना और धूल जमा होने से बालों में जो गंदगी बढ़ जाती है, तो जहाँ पहले सप्ताह में एक बार बाल धोते थे, बाल जिनके लंबे होते हैं तो वो अब 2 से 3 बार उनको हल्के शैम्पू से धोएं, ताकि ज़्यादा केमिकल्स का भी प्रयोग ना हो पाए और बालों पे कोई जो रासायनिक क्रियाएं जो होती है जिनसे बाल खराब हो जाते हैं, तो वो भी ना हो, माइल्ड शैम्पू का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, पर्याप्त पानी पिएं। वैसे हम पीते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा और अगर हम अपने ध्यान रखेंगे पानी के पीने का, तो हम शरीर में जो पानी की कमी का असर बालों पर देखा जाता है उससे हम बच पाएंगे। तेल की मालिश सप्ताह में कम से कम एक बार किसी भी नारियल, बादाम या आंवला तेल से हल्के हाथों से मालिश करें। कई बार देखा जाता है कि लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से बालों के जो है सर के मसाज करते हैं। दोस्तों, हमारे जो बालों के हेयर क्यूटिकल्स होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, उनको एकदम हल्के हाथों से मालिश करनी होती है, तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि इन दिनों धूप बहुत तेज़ होती है, तो बाहर निकलते समय आवश्यक रूप से या तो टोपी या स्कार्फ या छाता का उपयोग करें, ताकि जो सूर्य की किरणें हैं उससे बालों को बचाया जा सके, क्योंकि सूर्य की जो किरणें वो सीधी अगर हमारे बालों पर पड़ती है, हमारी स्कैल्प पर पड़ती है, तो वो हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। और इसके साथ ही संतुलित आहार, ये तो हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक है और बालों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। जैसे हरी सब्जियाँ, फल, दालें, दूध, सूखे मेवों का जो प्रयोग है वो बढ़ा दें और अपने डाइट में अच्छे से उनको शामिल करें। और इसके साथ ही देखा गया है दोस्तों कि आजकल लोग, जैसे महिलाएं हैं, वो हेयर ड्रायर और स्ट्रेटनर का या कर्लिंग मशीन का प्रयोग करती हैं, तो इससे भी हमारे बालों को नुकसान होता है। तो कोशिश करें कि कम से कम इसका उपयोग करें। और ये भी देखा गया है कि कई बार लोग गीले बालों में ही कंघी कर देते हैं, ये सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जब बाल गीले होते हैं तो हमारे जो स्कैल्प, जो हमारी रूट्स होती हैं, वो उस वक्त थोड़ी सी सॉफ्ट हुई होती हैं, तो उस समय आप कंघी ना करें। जब बाल थोड़े सूख जाएं, उसी समय आप बालों में कंघी करें, ताकि बाल कमज़ोर होकर आसानी से टूटे नहीं। तो ये हमारे कुछ टिप्स थी आपके लिए काम की बात में आज।
0: बिल्कुल दोस्तों, इन सब बातों के मद्देनज़र हम ये पाते हैं कि स्वस्थ बाल केवल बाहरी देखभाल से नहीं, बल्कि सही खान पान और अच्छी जीवन शैली से भी बनते हैं। नियमित देखभाल और संतुलित आहार अपनाकर हम गर्मियों में भी अपने बालों को स्वस्थ, घने और चमकदार रख सकते हैं और उनकी सेहत का पूरा ख्याल रख सकते हैं। तो आज की काम की बात हमें लग रहा है कि आपकी ज़रूर काम आएगी। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों आज जन्मदिन है सुधा सिंह, भारत के प्रसिद्ध एथलीट जिन्होंने विशेष रूप से 3000 मीटर स्टीपल चेज यानी कि बादा दौड़ में देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है और वे इस स्पर्धा में भारत की अग्रणी महिला धावकों में गिनी जाती हैं। दोस्तों 25 जून 1986 को रायबरेली में जन्मी सुधा का बचपन से ही खेलों की ओर रुझान था। ২০১০ में उन्होंने एशियाई खेलों में 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद में 2017 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उसके बाद 2018 में भी उन्होंने एशियाई खेलों में रजत पदक जीता। भारत का प्रतिनिधित्व 2012 के लंदन ओलंपिक और 2016 के रियो ओलंपिक में भी किया उन्होंने और इसीलिए उन्हें 2012 में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2021 में उन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया। दोस्तों सुधा सिंह ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है और लंबे समय तक भारत की शीर्ष धाविकाओं में शामिल रही हैं। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर हमें उन्हें अनेकानेक बधाइयां देते हैं और उनके स्वस्थ और मंगल जीवन की कामनाएं करते हैं।

0: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता का महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
1: मैं डॉक्टर दीपाली लोढ़ा, लोढ़ा हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पाली से बोल रही हूँ। हर दंपत्ति का सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बांझपन कई दंपतियों का यह सपना साकार नहीं होने देती। इनफर्टिलिटी का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बावजूद गर्भधारण न होना। वह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला ही नहीं बल्कि पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF, ICSI, IUI आदि उपलब्ध हैं। अब समय है कि इस विषय पर बिना संकोच के खुलकर बात करें और डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन लें। धन्यवाद।
0: गुफिक बायोसाइंसेस के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, आज के दिन हम याद कर रहे हैं हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक चंद्रशेखर पांडेय को। उन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं की जिनमें आधुनिक हिंदी कविता और रसखान और उनका काव्य उल्लेखनीय हैं। बनारस के कड़ी पियरी नामक स्थान पर चंद्रशेखर पांडेय का जन्म हुआ था। आज के दिन उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और प्रयाग से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। 1929 में चंद्रशेखर पांडेय कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे। चंद्रशेखर पांडेय ने

संस्कृत साहित्य के इतिहास की रूपरेखा नाम ग्रंथ की रचना की। इनका आधुनिक हिंदी कविता और रसखान काव्य उल्लेखनीय रहा है और कानपुर नवजीवन पुस्तकालय और श्री हिंदी साहित्य मंडल से चंद्रशेखर पांडे का घनिष्ठ संबंध रहा। और साथ ही साथ आज हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ सुचेता कृपलानी जी को। ये उत्तर प्रदेश की चौथी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। भारत के संविधान को मूल रूप देने वाली समिति में 15 महिलाएं भी शामिल थी। इन्होंने ये उन्हीं में से एक थी। संविधान के साथ भारतीय समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सुचेता कृपलानी जी ने। इन्हीं में इनका जो जन्म है वो आज ही के दिन 1908 को अम्बाला में हुआ था। सुचेता कृपलानी भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व का एक प्रेरणादायक उदाहरण मानी जाती हैं। भारत

0: और नेतृत्व का एक प्रेरणादायक उदाहरण मानी जाती हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और महात्मा गांधी के साथ नौ अकाली दंगों के समय राहत कार्य भी इन्होंने किया। संविधान सभा की ये सदस्य रही। वंदे मातरम गाने के लिए इन्हें विशेष रूप से याद किया जाता है।
1: तो 100वीं जयंती है मदन मोहन जी की। 25 जून 1924 को जन्मे मदन मोहन कोहली, जिन्हें हम मदन मोहन जी कहते हैं, जिन्होंने फिल्म जगत को एक अमिट विरासत दी है। दोस्तों, बचपन से ही संगीत के माहौल में अपना जीवन बिताने वाले, उन्होंने आगे चलकर भी संगीत में रुचि दिखाई, लेकिन उन्होंने कुछ समय सेना में भी कार्य किया, लेकिन फिर बाद में संगीत को ही अपना जीवन बना लिया।
0: हिंदी फिल्म संगीत के उस जादूगर की हम बात कर रहे हैं जिनकी धुनों में गजल की नज़ाकत और शास्त्रीय संगीत की गहराई समाई हुई थी। कई सारे ऐसे गीत उन्होंने हमें दिए जिन्हें आज भी सम्मान दिया जाता है, प्यार से सुना जाता है, स्नेह दिया जाता है।
1: और इसीलिए दोस्तों उन्हें अक्सर गजलों का शहजादा कहा जाता था और कहा जाता है, क्योंकि उनकी धुनों में गजल की नज़ाकत और मधुरता का मधुर अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और उनके जो गीत हैं, लग जा गले, नैना बरसे रिमझिम, आपकी नज़रों ने समझा, ये ऐसे गीत हैं जो जब तक सुने जाएंगे तब तक दिलों पर अमिट छाप छोड़ते जाएंगे।
0: मदन मोहन ने अपने 2.5 दशक लंबे सिने करियर में लगभग 100 फिल्मों के लिए संगीत दिया। उनकी मृत्यु के लगभग 30 वर्ष बाद उनकी अप्रयुक्त धुनों का उपयोग फिल्म वीर ज़ारा में किया गया। फिल्म का संगीत अत्यंत लोकप्रिय हुआ और नई पीढ़ी भी उनके संगीत की दीवानी है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार। आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय सवेरे के 10 बजे हैं और अब समय हो गया है कार्यक्रम लोक संगीत का।

अभी आप सुन रहे थे शोभा व्यास का गाया ये लोकगीत। लोक संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं चंपा मेथी पार्टी का गाया ये लोकगीत।

इस लोकगीत के साथ आज का लोक संगीत का कार्यक्रम बस यहीं तक। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुनते हैं गैर फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का पहला नगमा है फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे अदनान सामी की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और जगजीत सिंह का गाया ये गीत।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे आर्यंस की आवाज़ में, सुगम संगीत में। आइए अब सुनते हैं हेमा सरदेसाई का गाया ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोतम फिल्म संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बेटा फिल्म का गीत, अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की आवाज में। गीतकार थे समीर। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रुतम फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब आप सुन रहे हैं साजन फिल्म का ये गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे हैं बाजीगर फिल्म से। कुमार सानू, अनु मलिक और साथियों की आवाजें, देव कोहली के बोल और अनु मलिक का संगीत।

1942 A Love Story। इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल और आरडी बर्मन का संगीत।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।

दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल और जतिन ललित का संगीत।

श्रोतम, फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहरा फिल्म से। उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, आनंद बख्शी के बोल और विजू साह का संगीत।

श्रोता, फिल्म संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। ये गीत कुमार सानू, कविता कृष्ण मूर्ति और साथियों की आवाज में, गीतकार थे महबूब। आइए अब आपको सुनाते हैं फिल्म कुछ कुछ होता है से ये गीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म कुछ कुछ होता है से ये गीत कुमार सानू की आवाज में समीर के बोल और जतिन ललित का संगीत था। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये आखिरी गीत फिल्म साजन से अलका याग्निक की आवाज, समीर के बोल और नदीम श्रवण का संगीत।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर दिन के ठीक 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत।

0: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता का महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहम्मद शकील उप जिला अस्पताल सुमेरपुर से बोल रहा हूँ। हर दंपति का सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बांस बन कई दंपति का सपना साकार नहीं होने देता। इनफर्टिलिटी का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयास के बावजूद गर्भ धारण न होना। यह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखिए, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला ही नहीं बल्कि पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF तक उपलब्ध हैं। अब समय है कि हम इस विषय पर बिना संकोच खुलकर बात करें और डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन लेवे। धन्यवाद।
0: गुफिक बायोसाइंसेस के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे आज धरा

इसी लोक रचना के साथ लोक संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता का महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
1: मैं डॉक्टर दीपाली लोढ़ा, लोढ़ा हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पाली से बोल रही हूँ। हर दंपति का सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बांझपन कई दंपतियों का ये सपना साकार नहीं होने देती। इनफर्टिलिटी का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बावजूद गर्भधारण न होना। वह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला ही नहीं बल्कि पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF, ICSI, IUI आदि उपलब्ध हैं। अब समय है कि इस विषय पर बिना संकोच के खुलकर बात करें और डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन लें। धन्यवाद।
0: गुफिक बायोसाइंसेज के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी।

0: इसी गजल के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के ठीक एक बजने को हैं। अब हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने देश के लोकतंत्र और संविधान के आदर्शों को कायम रखने वाले नागरिकों के असाधारण साहस की सराहना की। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा कि आपातकाल एक कठिन दौर था जब देश के संवैधानिक मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। उन्होंने देश की न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करने का आह्वान किया। आपातकाल की बरसी पर आज जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि प्रबंधन संस्थान में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आयोजन में आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया जा रहा है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षाओं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज जयपुर के शिक्षा संकुल में ये परिणाम जारी किया। परीक्षा के नतीजे विद्यार्थी विभाग की वेबसाइट और अन्य निर्धारित माध्यमों से ऑनलाइन देख सकेंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित कर रहा है। कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण भारत की विकास आवश्यकताओं के लिए एआई आधारित समाधानों पर चर्चा करना है। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार कार्यशाला से प्राप्त सुझाव ग्रामीण विकास में एआई के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग के लिए नीतिगत रूपरेखा तैयार करने में सहायक होंगे। राज्य पुलिस ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन

0: के खिलाफ प्रदेशव्यापी विशेष अभियान चलाया है। महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर 4 से 23 जून तक चले इस अभियान में रिकॉर्ड 1,58,000 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ बीएल मीणा ने बताया कि इस दौरान नियमों के विरुद्ध ब्लैक फिल्म, अवैध हुटर, अनधिकृत लाल नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न और गलत नंबर प्लेट लगाने वाले वाहनों के चालान काटे गए। जिलावार कार्रवाई में जालौर जिला पूरे प्रदेश में पहले और अजमेर दूसरे स्थान पर रहा, जबकि जयपुर कमिश्नरेट में 807 कार्रवाई की गई। पुलिस ने आमजन से सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए नियमों का पालन करने की अपील की है। राज्य पुलिस ने साइबर ठगों के नए तरीके को लेकर एडवाइजरी जारी की है। साइबर अपराधी अब फर्जी बॉस या आरबीआई जैसी नियामक संस्था बनकर कर्मचारियों, विशेषकर वित्त विभाग के लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि साइबर ठग ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजकर तत्काल भुगतान का दबाव बनाते हैं। वे कोई लिंक या जिप फाइल भेजकर सिस्टम हैक कर लेते हैं। पुलिस ने सलाह दी है कि बिना पुष्टि किए कोई वित्तीय लेनदेन ना करें और अनजान लिंक या फाइल बिल्कुल ना खोलें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की शिकायत तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज कराएं। अजमेर के ब्यावर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ओर से नशा मुक्ति के लिए ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा शुरू किया गया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन और महानिरीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में शुरू हुए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नो ड्रग्स जोन बनाना है। इसके तहत सभी शिक्षण संस्थाओं के 500 मीटर के दायरे को पूरी तरह नशा मुक्त क्षेत्र बनाने के प्रयास किए जाएंगे। ब्यावर के केंद्रीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए स्कूलों में शिकायत पेटी भी स्थापित की गई है। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियों में और तेजी आई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी भाग में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे अधिक 90 मिलीमीटर बरसात 12 जिले के अटरू में रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।
2: कृषि जगत प्रोग्राम सुन वाला सगला किसान भाइया ने दिनेश राणे जरा घणे मानसो राम राम और नमस्कार सा। किसान भैया, खेती बाड़ी रेजी का काम काज है व्यापा हर मिस करे जा, भात भातरा कार्यज है खेती मैंने नवाचार भी आपा करा हाँ। खेत बचाओ अभियान रे तहत आज आपने जानकारी दी रवा, संरक्षित खेती युवाओं को कृषि से जोड़ने के लिए एक बेहतर विकल्प। कार्यक्रम में आज पधारिया है डॉक्टर प्रदीप कुमार, आप प्रधान वैज्ञानिक है काजरी जोधपुर मैंने। राम राम सा।
3: राम राम। राम राम किसान भाइयों।
2: प्रदीप जी, ओजी को अभियान चल रियो है, 1 जून 2026 शुरू हुई है और 30 जून 2026 तक ओ चलेला। तो हमें खेती बाड़ी ने मैंने कही है कि खास तौर से आप बात करा, अपनो अथुनो राजस्थान है और अटे पानी की भी कमी है और कई भांत भांतरी जी की अब क्या आया करे। हमें खेती मैंने अपना युवा मोठियार है, कई एग्रीकल्चर में कोर्सेज करे है, कई नवाचार करता थका वे खेती कर रहा है, खेती मैंने कोई अच्छो अवसर मिल जा, लाभ मिल जा।
3: देखिए, खेती आमतौर पर जो परंपरागत खेती होती आई है सदियों से, खुले खेत में जो खेती करते हैं उसमें बहुत सारी व्याधाएं होती हैं और इस सभी से सभी अवगत हैं। उसमें जैसे अगर कोई खेती खुले खेत में कर रहा है, खासकर बागवानी की खेती जिसमें सब्जी और फलदार पौधों की खेती करते हैं, तो वातावरण में जो उतार चढ़ाव है उसकी वजह से, जो पशु पक्षी हैं उनकी वजह से, या पानी की भी बहुत ज्यादा जो है खपत होती है, तो इन सब की वजह से जो उत्पादकता है कम आती है। और ये थपेड़े अगर कोई आम जो बच्चे हैं आजकल आजकल के नवयुवक हैं वो देखते हैं
2: हाँ।
3: तो उन्हें लगता है कि ये एक खेती का कोई बहुत अच्छा बेहतर विकल्प रोजगार के लिए नहीं है
2: हाँ।
3: इसके विपरीत जो है संरक्षित खेती जो आजकल जिसका प्रचलन है काफी, उसमें पॉली हाउस है, नेट हाउस है, तो इनके अंतर्गत जो है जब खेती की जाती है तो जो बाहर की परिस्थितियां हैं उनसे काफी फसलों को बचाव होता है, और उसके अलावा इसके अंदर

0: का वातावरण जो है काफी अनुकूल हो जाता है, जिससे फसल की जो बढ़वार है, पैदावार है, वो काफी अच्छी होती है और जो इसमें फल भी लगते हैं वो काफी गुणवत्तापूर्ण होते हैं। साथ ही साथ जैसा कि हम पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पानी की बहुत ही कमी है, मिट्टी जो है थोड़ी हल्की है, पानी कम सोखती है, और इसके अंतर्गत जब संरक्षित संरचना के अंतर्गत खेती करते हैं तो उसमें जो पानी की बचत है वो काफी 80 से 90% तक पानी की बचत इसके अंदर हो जाती है। यानी कि खुले खेत में जितना पानी लगता है खेती में
1: हाँ,
0: 1 एकड़ में, उसका सिर्फ जो है 20 से 25% पानी देने से अंदर में खेती उतना उत्पादन लिया जा सकता है।
1: प्रदीप जी, आप बात करिए कि संरक्षित खेती है, आज की संरक्षित खेती है, आम खेती जी का अपना किसान भाई कर रहा है या कोई युवा जी का मोटियार है वे खेती से जुड़नी चाहे, तो वाणी स्वामी सीधो सो समझना बहुत जरूरी है कि आज की संरक्षित खेती है इनसू और आम जी की खेती करिया करे लोग बा किसान भाई वीणु किन तरह आ अलग है।
0: जी, जैसा कि आमतौर की आम खेती जो है, यानी कि परंपरागत खेती है, उसमें एक तो लागत ज्यादा आती है और उसमें पर्यावरण यानी कि वातावरण का उतार चढ़ाव या उसकी समस्याओं से जूझना पड़ता है, तो उसमें एक निश्चितता नहीं रहती है कि जो उत्पादन होगा वो अच्छा होगा या एक निश्चित होगा जितना टारगेट कर रहे हैं। उसके विपरीत जो है, जो संरक्षित खेती है जिसमें जैसे पॉली हाउस नेट हाउस है, इसमें क्या है कि इन सब की वजह से इनका रोकथाम हो जाता है और अंदर जो है बहुत अच्छा अनुकूल वातावरण होने की वजह से उत्पादकता अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात है, जो इसको एक व्हाइट कॉलर जॉब के रूप में देखा जा रहा है कि इसमें ज्यादा कार्य करने की जो नवयुवक है उनको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती, उन्हें ज्ञान की जरूरत होती है कि इसमें कब क्या देना है, कौन सी किस्म लगानी है, कितना पानी देना है, और इसमें जो वर्कर हैं उनको भी सहूलत रहती है, वो भी अच्छी तरीके से करते हैं। और चूंकि इसमें जो उत्पादन होता है वो प्रतिदिन मंडी जाता है और अच्छा पैसा आता है, और बीज लगाने से 1 महीने पश्चात 35 दिन पश्चात जो है पैसा आना शुरू हो जाता है,
1: हाँ,
0: तो रोजगार परक है, इसलिए जो है इसमें नवयुवक इसकी तरफ आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं।
1: बिल्कुल सही बता बताई सा आप अपने किसान भाई ने प्रदीप जी। यूं है कि खास तौर से आप देखा के राजस्थान जी को क्षेत्र है वो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है, अठे
0: जी
1: पानी की भी कमी है, बरसात भी वह तो कम वह है और जमीन में जी को पानी है दिनों दिन अंधाधुन अपा प्रयोग
0: कम
1: कर रहे हैं काज रहे खेती बाड़ी में तो वो भी कम हो रही है। युवा जी का पढ़िया लिखिया भी है बात बात रहे दूजा रोजगार में भी वे जावनी चाहे लेकिन खेत है वाणा कने तो वे चाहे कि भाई मारो जी को खेत है आ मारी मूलभूत आवश्यकता है, मैं गांव में बैठो रहूं और गांव में बैठो बैठो मैं अच्छी खेती कर लूं, तो कहीं इस वास्ते कोई और उन्हें ज्ञान री आवश्यकता वह युवा ने।
0: जी बिल्कुल सही बात कही। आज खेती ऐसी हो गई कि काजरी में बात करें, जो कृषि से संबंधित नहीं है ज्यादातर लोग वो आ रहे हैं हमारे पास, काजरी में आ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, और यहाँ पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जाता है जो रोजगार पर रखा है, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर काजरी में है। इसमें बहुत अच्छा एक रोजगार परक जो है व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। इसमें ज्ञान की बात करें तो एक बेसिक ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, वो कोई भी हाई स्कूल पढ़ा हुआ है जो कि वो ट्रेनिंग को अटेंड करे और समझ इतनी हो कि वो नोट कर सके, और जो बेसिक संरचना कैसी होती है पॉली हाउस नेट हाउस की, उसमें क्या क्या सावधानियां रखने की जरूरत है, अगर वो सारी जो बेसिक जो फसल कौन सी लगानी, कब लगानी है, कैसे उसमें खाद उर्वरक का इस्तेमाल करना है, तो उसकी सारी बेसिक जानकारी अगर किसान या जो भी नवयुवक है वो रखता है तो वो बहुत बेहतर तरीके से इसको एक व्यवसाय के रूप में चला सकता है। उदाहरण तौर पे अगर हम बताएं अपना पश्चिमी राजस्थान, जहां पे खुले खेत में खासकर सब्जी की खेती करना बड़ा दुर्लभ सा है, बहुत ही
1: कठिन है।
0: डिफिकल्ट,
1: हाँ,
0: और उसके विपरीत सबसे ज्यादा अगर कहीं तेजी से बढ़ाव हो रहा है इस संरक्षित खेती के अंदर, वो पश्चिमी राजस्थान अपना है। यहां पर जो इसकी फायदा है अगर एक बात करें, मोटा मोटी एक जो है संरचना वो
1: हाँ
0: 10 लाख रुपए से लेके 40 लाख रुपए तक की अलग अलग संरचनाएं हैं। अगर एक किसान चाहे, एक नवयुवक चाहे कि अपना रोजगार शुरू करना है खेती में, 1-10 लाख रुपए लेके वो आ सकता है, जिसमें उसको जो है सरकार से सब्सिडी भी प्राप्त होती है, तो उसको लेके वो उतर सकता है। और प्रति माह जो औसतन हम लोगों ने उसका मूल्यांकन किया है, 1 एकड़ से 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक प्रति माह शुद्ध आय प्राप्त कर सकता है अगर वो अच्छी तकनीकी ज्ञान के तहत वो उतरता है इसमें।
1: बिल्कुल सही कहे सा जदीज जी का युवा है खेती रे तरफ जुड़ेला और वे आकर्षित भी हो वेला। इन साथ साथ है जो आप बाता बाता में बात बता दी कि भाई सरकार कान सुन जी को अनुदान है सहयोग है और मिलिया करे युवा है वो आप रे तरफ देखो पैसा टका लगावे चाहे कि भाई मैं थोड़ी 5 बीघा है तो 5 बीघा की जगह 10 बीघा महीने में खेती करनी चाहूँ जो उतरो जी को ज्यादा मात्रा में आकार बढ़ान वो खेती लेनी चाहे, तो इन वास्ते और भी भात मात्रा अड़ो सरकार कानी सु कोई सहयोग या कोई अनुदान लागत वे तो वह भी कम आवे।
0: देखिए,

0: लागत की बात रही और बढ़ाने की बात रही, ये विपरीत है।
1: हाँ
0: संरक्षित खेती में क्या होता है, जो 10 बीघा में एक अगर कोई खेती कर रहा है, वो उत्पादन 1 बीघा में संभव है इसमें। तो यानी कि 10 बीघे की जगह 1 बीघे को ध्यान में रखना है, और उसके लिए सरकार का अनुदान है। सरकार इसमें जो है 50% से लेकर 70% तक सब्सिडी या अनुदान देती है। उसमें जो है दो उसके जो है संरचना है, जिसमें एक पहला है राज्य सरकार, जो आपके उद्यान अधिकारी किसी भी जिले के, वहां पे किसान भाई या युवक जाएं और वहां पे अपनी बेसिक जो आपको ले जाना है वो एक आपका, यानी कि चाहे वो खुद का हो या लीज पे हो, तो उसकी खतौनी जो होगी वो ले जाना है। और सबसे मुख्य बात है कि पानी, जो पानी है वो 1 डेसी साइमन पर मीटर, जो ईसी है, जिसको ईसी बोलते हैं, अगर टीडीएस में बात करें मोटा मोटी, वो 500-600 टीडीएस के नीचे होना चाहिए या 1 ईसी के नीचे होना चाहिए। अगर ऐसा पानी है, ऐसे नवयुवक इसमें अवश्य आना चाहिए। उसके लिए जैसे मैंने बताया कि राज्य सरकार से 70% तक अनुदान है,
1: हाँ
0: और भारत सरकार जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के तहत इसमें सब्सिडी मिलती है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, उसमें 50% तक अनुदान है। जो भारत सरकार का एनएचबी है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, उसके तहत जो है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अनुदान दिया जाता है, अपने राज्य सरकार के अंतर्गत है। वो थोड़ी छोटी संरचना, यानी कि 1 एकड़ तक या 2500 स्क्वायर मीटर तक की संरचना पर शुरुआत होती है और 1 एकड़ तक देते हैं। नवयुवक इसमें अगर छोटी भी रकम लेके आते हैं,
1: हाँ
0: उनको एक सपोर्ट के तहत पे जो है बैंक से सब्सिडीज भी मिलती है, साथ में जो है बैंक से उनको लोन भी मिलता है। और जो लोन है वो करीब करीब 6.5% ब्याज पर लोन इसमें जो है सरकार देती है उसके लिए, जो कि इस खेती के अंतर्गत आता है, संरचित खेती के।
1: प्रदीप जी, हालता हालता माने युवा ने संक्षिप्त में आप संदेश और आप जी की बोलो ने आप देवनी चाहो।
0: युवा लोग अपने वापस, जो खासकर किसान अपने जड़ से जुड़े हुए हैं, जो गांव से परिवारों से हैं, उनके पास अपना खेत है, अपनी जमीन है, पानी है, तो उन्हें मेरा आग्रह यही रहेगा, आप अच्छी जानकारी लेके आप कृषि से विमुख मत होइए, कृषि में आइए। दूसरे लोग आ रहे हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते? तो जो कृषि के प्रति अपना लगाव है, उसको एक नया मॉडर्न तरीका देके, संरक्षित खेती के अंतर्गत जो मॉडर्न खेती की एक विधा है, उसमें आइए और एक रोजगार के रूप में इसको आगे ले जाइए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, आप पधारिया और युवा
0: धन्यवाद
1: ने किसाना
0: सर।
1: ने संरक्षित खेती युवाओं को कृषि से जोड़ने के लिए एक बेहतर विकल्प विषय माते आप जानकारी दे रही। राम राम।
0: राम राम, नमस्कार।
1: कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूर्व वेरियो है दिनेश राणे जाने सीख गिराओ। राम राम।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: नमस्कार, आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति पुरोहित और मेरे साथ है मेरी प्यारी सखी
1: ज्योत्सना।
0: आप जुड़ चुके हैं हमारी नारी वाटिका से,
1: तो आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन।
0: जेठ महीने की ये तपती दोपहर, सूरज का कड़ा इम्तहान और इस बीच हमारी आस्था का सबसे बड़ा पर्व।
1: जी हाँ, आज है निर्जला एकादशी।

0: सच में दोस्तों, इस तेज गर्मी में जहां हम आधा घंटा भी बिना पानी के नहीं रह सकते, गला सूखने लग जाता है,
1: जी
0: वहीं आज कई श्रद्धालु बिना पानी की बूंद पिए निष्ठा से इस पर्व को मनाएंगे। जानेंगे हम इस एकादशी के बारे में। बने रहिए नारी वाटिका के संग, जहां श्रद्धा भी है, भक्ति भी है और अपने पसंदीदा गीतों की त्रिवेणी भी है।

0: जी हाँ, 25 जून यानी आज साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। ज्योति, ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी पर व्रत पूजा करने से 24 एकादशियों के समान फल प्राप्त होता है।
1: पता है ज्योत्सना, इस दिन किसी पौधे की भी पूजा की जाती है
0: बिल्कुल।
1: जो विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। इस दिन तुलसी माता के पौधे की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जो कि विष्णु प्रिया मानी जाती हैं। जैसा कि अभी आपने कहा,
1: जी
0: तुलसी को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इस दिन तुलसी जी को हल्दी वाले अक्षत अर्पित करने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी को लाल पीली चुनरी पहनाकर आज के दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत रखती है। इसलिए तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये निर्जला एकादशी है।
1: और हो सके तो इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना भी नहीं
0: जी
1: चाहिए।
0: जी
1: और पता है इस दिन किया गया जो स्नान है, दान है और जप है, कार्य, वो सभी हमेशा के लिए मतलब अक्षय हो जाते हैं। और इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। सखियों, भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए आगे बढ़े चलते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: ज्योति, आप बात कर रही थी निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है,
1: बिल्कुल
0: क्या
1: कहा
0: इसके
1: जाता
0: पीछे
1: है,
0: कोई कथा छुपी है क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल ज्योत्सना, इसके पीछे कथा ऐसा है कि एक बार क्या होता है कि बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि मुझसे कोई भी व्रत नहीं होता है, तो आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि मैं वो व्रत करूं और
0: जी
1: मेरा उद्धार हो जाए,
0: जी
1: सदगति हो जाए। तो व्यास जी ने कहा कि तुमसे ये

0: वर्ष भर की सारी एकादशी नहीं हो सकती, तो कोई बात नहीं, केवल तुम एक निर्जला कर लो, यानी आज ही का दिन, आज ही
1: जी
0: की एकादशी यानी निर्जला एकादशी, उसे कर लो, तो तुम्हें वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक निर्जला कर लोगे तो सारी एकादशियों का यानी 24 एकादशियों का फल
1: मिल
0: तुम्हें मिल
1: जाएगा।
0: जाएगा। तो भीमसेन ने वो एकादशी की, और इसीलिए निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी कहते हैं।

0: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता का महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहम्मद शकील उप जिला अस्पताल सुमेरपुर से बोल रहा हूँ। हर दंपति का सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बांस बन कई दंपति का सपना साकार नहीं होने देता। इनफर्टिलिटी का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयास के बावजूद गर्भधारण न होना। यह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखिए, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला ही नहीं बल्कि पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF तक उपलब्ध हैं। अब समय है कि हम इस विषय पर बिना संकोच खुलकर बात करें और डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन लें। धन्यवाद।
0: गुफिक बायोसाइंसेस के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी।
2: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका अपनी वाटिका यानी कि नारी वाटिका में। जोसना, हम बात कर रहे थे निर्जला एकादशी की। वाकई में पानी के बिना रहना बहुत बहुत टिपिकल है,
3: मुश्किल
2: यानी कह सकते हैं कि बहुत कठिन व्रत है।
4: पर इस एकादशी में आहार के साथ जल का संयम रखना भी जरूरी है ज्योति।
2: जी जी बिल्कुल,
4: क्योंकि ये व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। ये अनुशासन और मन की शुद्धि को बढ़ाने का सबसे अच्छा माध्यम है।
2: जी,
4: जलदान, अन्नदान, फलदान तथा जरूरतमंदों की सहायता करना पुण्यदायी माना जाता है।
2: बिल्कुल, तभी तो कहा गया है कि दान से बढ़कर कोई धर्म नहीं और सेवा से बढ़कर कोई कर्म नहीं। जो बांटे खुशियां और सम्मान वही बन जाए सच्चा इंसान।

0: सखियों, नारी वाटिका में हम हमेशा प्रकृति के करीब आप और हम चाहते हैं, कोशिश रहती है कि हम प्रकृति के सानिध्य में रहें, उनसे खूब सारी बातें करें। और जहाँ बात नेचर की होती है तो इससे जुड़े कुछ पेय पदार्थ हैं, उनके बारे में जानने की भी इच्छा होती है। तो आइए सुनते हैं भेंट वार्ता प्राकृतिक पेय निर्माता नरेंद्र कुमार से, ज्योत्सना की फोन आउट बातचीत।
1: प्रकृति की गोद में छिपा है स्वास्थ्य का अमृत, फलों की मिठास, जड़ी बूटियों की शक्ति और परंपरा का स्वाद। जब कृत्रिमता के दौर में लोग प्राकृतिक विकल्पों से दूर हो रहे हैं, तब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रकृति के इन उपहारों को जन-जन तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो सखियों, आज फोन के माध्यम से हमसे जुड़े हैं प्राकृतिक पेयों के निर्माता श्री नरेंद्र कुमार जी। आपने प्राकृतिक पेयों के क्षेत्र में अपने नवाचार और समर्पण से एक अलग ही पहचान बनाई है। आइए उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार नरेंद्र जी, ना आकाशवाणी जोधपुर के नारीवाची का कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, हमारे प्यारे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: जी नरेंद्र जी, सबसे पहले हमें बताइए कि प्राकृतिक पेय क्या होते हैं।
2: प्राकृतिक पेय वे पदार्थ हैं जो फल, फूल, जड़ी बूटी, बीज और पारंपरिक प्राकृतिक सामग्री से तैयार किए जाते हैं। इनमें बनावटी रंग, स्वाद और केमिकल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होता,
1: जी
2: जिससे हमारे शरीर पर कोई साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। ये शरीर को ताजगी प्रदान करते हैं और हमारी पारंपरिक खाद्य विरासत को भी आगे बढ़ाते हैं।
1: आप स्वयं प्राकृतिक पेयों का निर्माण करते हैं, आपको इस क्षेत्र में कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ऐसा क्यों लगा कि इसको अपना कार्य क्षेत्र बना लेना चाहिए?
2: इसकी प्रेरणा हमें परिवार से ही मिली।
1: जी
2: मेरे दादाजी वैद्य थे, मैंने बचपन से ही उनको जड़ी बूटियों से दवाएं बनाकर लोगों को इलाज करते देखा।
1: जी

0: प्रभावित होकर मैंने भी वेद विशारद का कोर्स किया और घर में भी शुरू से ही मेरी मम्मी ताजे फल और सब्जियों से पेय पदार्थ बनाकर हमें पिलाती थी।
1: जी
0: लेकिन बदलते समय के साथ महसूस हुआ कि आधुनिक जीवन शैली में लोगों के पास इन पारंपरिक पेयों को बनाने का समय ही नहीं रहा, ना वो चाहते हैं
1: जी
0: और वो इनसे दूर होते जा रहे हैं। आज के युवा और बच्चों को तो इसका पता भी नहीं है, इसलिए हमने इन्हीं लोगों तक फिर से पहुंचाने का प्रयास शुरू किया।
1: जी नरेंद्र जी, भारत में कई पारंपरिक प्राकृतिक पेय हैं। आप कौन कौन से विशेष पेय बनाते हैं, किसमें आपकी विशेषता है?
0: वैसे तो सारे प्राकृतिक पेय खास ही होते हैं, पर सबसे खास पेय बार्ले वाटर और गवावा यानी अमरूद का जूस है। अमरूद के अंदर और जैसे संतरे और नींबू से ज्यादा विटामिन सी होता है,
1: जी
0: कैलोरी कम होती है, फाइबर ज्यादा होता है, तो हार्ट को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है। इसमें मौजूद पोटेशियम और फाइबर ब्लड प्रेशर को संतुलित करते हैं और खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करने में मदद करते हैं। वजन कम करने में भी सहायक होते हैं
1: जी,
0: क्योंकि फाइबर ज्यादा होता है तो पेट भरा भरा रहता है हमेशा। बार्ली वाटर है यानी जौ का पानी, जो पेट की हर समस्या जैसे एसिडिटी है, पथरी है, उसका सबसे बेस्ट इलाज।
1: जी
0: स्किन को भी ग्लोइंग रखता है, वेट लॉस में भी मदद करता है।
1: इसे कब कब लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए?
0: इसे 1 लीटर से 4 लीटर तक दिन में सेवन कर सकते हैं, पर भूखे पेट करें तो ज्यादा इफेक्ट करता है।
1: अच्छा,
0: और आयुर्वेद में माना गया है कि खाने के 2 घंटे बाद पेट भूखा ही माना जाता है।
1: जी
0: इसके अलावा पंचामृत जिसमें तुलसी, पुदीना, अदरक, नींबू, जीरा का समावेश है, और उसी के साथ अष्टामृत है जिसमें भी तुलसी, पुदीना, अदरक, नींबू, जीरा। खुशबू के लिए हमने सौंफ, काला नमक और हाजमा के लिए दालचीनी। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है,
1: जी
0: प्यास की तलब नहीं होती, शरीर को हाइड्रेट रखता है।
1: और कोई पेय जो आप विशेष रूप से बनाते हैं?
0: सौंफ है और कोकम है जो शरबत है जो शरीर को ठंडक देते हैं। इमली पाना और कच्ची कैरी का पाना भीषण लू से बचाता है
1: जी,
0: और इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। और किसी भी शरबत में सब्जा के बीज या गोंद कतीरा डाल के पिया जाए तो गर्मी से राहत मिलती है और कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में मिल जाता है।
1: जी
0: वहीं जामुन है, बेल है, आंवला मौसम के फल हैं। इनका जूस या शरबत न केवल ताजगी देते हैं बल्कि डायबिटिक पेशेंट के लिए नेचुरल स्वीटनर का काम भी करते हैं और इनकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी सहायक है। और खास बात यह है कि बार्ले वाटर के अलावा कोई भी पेय हम उपवास या व्रत फास्ट में भी ले सकते हैं।
1: जी नरेंद्र जी, आपने इतने अच्छे पेयों के बारे में हमें बताया, तो इन सभी पेयों को तैयार करते समय आप किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं?
0: हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है कि हम लोकल और सीजनल फ्रेश सामग्री का ही उपयोग करें।
1: जी
0: स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है और सही विधि से बनकर तैयार हो ताकि असली स्वाद बरकरार।
1: जी आपने बताया कि आजकल के युवा और बच्चों को तो इन पेयों के बारे में पता ही नहीं होता और आज की जो युवा पीढ़ी है वो तेजी से पैकेज ड्रिंक्स की ओर आकर्षित हो रही है। ऐसे में प्राकृतिक पेयों को बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं?
0: हमें इन पारंपरिक पेयों की कहानियाँ, उनके बनाने के पीछे का इतिहास, स्वाद, उनके लाभ और सांस्कृतिक महत्व को युवाओं तक पहुँचाना चाहिए।
1: जी
0: नए आकर्षक रूप और बेहतर प्रस्तुति के साथ उन्हें आधुनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। नरेंद्र जी, अंत में हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: प्रकृति ने हमें स्वाद और स्वास्थ्य से भरपूर अनेक उपहार दिए हैं। मैं तो बच्चों और युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, आइए हम अपने पारंपरिक प्राकृतिक पेयों को अपनाएं, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करें और अपनी समृद्ध खाद्य संस्कृति को आगे बढ़ाएं।
1: जी
0: और युवाओं से यही विशेष कहना चाहता हूँ कि आधुनिकता को अपनाने के साथ साथ अपनी पारंपरिक खाद्य धरोहर को भी जानें और उसका सम्मान करें। हमारे गाँव, घरों और क्षेत्रों में ऐसे अनेक पेय हैं जिनमें स्वाद के साथ हमारी संस्कृति की कहानी भी समाई हुई है, उन्हें अपनाएं।
1: नरेंद्र जी, आपने अपने अनुभवों और महत्वपूर्ण जानकारियों को हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद, आपने भी हमें इतना समय दिया, उसके लिए आपको भी धन्यवाद।
1: जी हमें विश्वास है कि आपकी बातें हमारे श्रोताओं को प्राकृतिक पेयों को अपनाने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा देगी। तो सखियों, आज की इस रोचक और ज्ञानवर्धक बातचीत से हमें ये समझने का अवसर मिला कि प्राकृतिक पेय केवल स्वाद और ताजगी का स्रोत नहीं है बल्कि स्वस्थ जीवन शैली की ओर एक महत्वपूर्ण कदम भी है।
2: सखियों, अभी आपने प्राकृतिक पेय निर्माता नरेंद्र कुमार से ज्योत्सना की फोन आउट बातचीत सुनी।

0: ज्योति, हमारी भारतीय संस्कृति में व्रत और उपवास केवल धार्मिकता से नहीं बल्कि स्वास्थ्य और विज्ञान से उसका बहुत ही गहरा जुड़ाव है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, वो
1: जी
0: सारे टाइम काम करता रहता है, पर उपवास के दौरान भोजन का सेवन कम होने से उसे आराम मिल जाता है और उसकी जो कार्य क्षमता है, जो उसकी एफिशिएंसी है, वो बेहतर हो जाती है।
1: बिल्कुल। और इसके साथ ही जोशना, पता है, बॉडी भी डिटॉक्स होने लग जाती है, क्योंकि व्रत के दौरान हमको एनर्जी तो चाहिए होती है
0: जी
1: और लेते कुछ भी नहीं है हम लोग, तो हमारे शरीर के अंदर जो फैट जमा होता है ना, उसका यूज होना शुरू हो जाता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि नेचुरल तरीके से हमारे बॉडी का क्लीनिंग होना शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल। और जिससे वजन भी कंट्रोल में रहता है, और साथ में जब व्रत के दौरान हम बैलेंस डाइट लेते हैं, लिमिटेड डाइट लेते हैं, तो
1: जी
0: आहार का सेवन कम हो जाता है
1: बिल्कुल
0: और हमें स्वस्थ रहते हैं, फिट एंड फाइन रहते हैं और एक्टिव रहते हैं,
1: बिल्कुल
0: और फिर से मन में नए जीवन के लिए तमन्ना और जीने के लिए तमन्ना भी जाग जाती है।

0: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता का महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
1: मैं डॉक्टर दीपाली लोढ़ा, लोढ़ा हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पाली से बोल रही हूँ। हर दंपति का सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बांझपन कई दंपतियों का ये सपना साकार नहीं होने देती। इनफर्टिलिटी का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बावजूद गर्भधारण न होना। वह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला ही नहीं बल्कि पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF, ICSI, IUI आदि उपलब्ध हैं। अब समय है कि इस विषय पर बिना संकोच के खुलकर बात करें और डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन लें। धन्यवाद।
0: गुफिक बायोसाइंसेस के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी।
2: सखी बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की, व्रत की, उपवास की और सेहत की। ज्योत्सना, पता है कि जब हम उपवास करते हैं ना, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है
3: जी।
2: और कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ जाती है। और इसमें ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ खाने को छोड़ा है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हमारे जो विचार हैं वो भी बहुत प्योर हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं और खुद को सात्विक बनाने का

0: बहुत प्रयास करते हैं।
1: जी
0: इतना ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसका इस समय जब व्रत वगैरह हम कर रहे होते हैं तो हमारा जो पेशेंस लेवल है वो भी बहुत बढ़ जाता है, और एक पॉजिटिव सोच के साथ हम अपने काम को अंजाम देने लग जाएं।
1: बिल्कुल, क्योंकि सच्चे व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं होता ज्योति, बल्कि मन को शुद्ध करना और पावन बनाना होता है।
0: जी
1: संयम, अनुशासन और सेवा के माध्यम से ही जीवन को सही मायनों में सजग बनाया जा सकता है, क्योंकि जिंदगी एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जिसे हर किसी को गुनगुनाना चाहिए।

नियम, अनुशासन और सेवा के माध्यम से ही जीवन को सही मायनों में सजग बनाया जा सकता है, क्योंकि जिंदगी एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जिसे हर किसी को गुनगुनाना चाहिए।

आपकी बातें सुनता हूं, आपके लिए सोचता हूं, आपके सुझाव देखता हूं, उसी से मेरे विचारों की एक दौड़ शुरू हो जाती है जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास

0: कई बार सखी उपवास के बाद में ऐसा हम देखते हैं कि थोड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगती है, कमजोरी आ जाती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। कई ऐसा नहीं होता जो उसने बीपी लो हो रहा है, हमें
1: चक्कर आ
0: है
1: रहे
0: ना
1: हैं।
0: चक्कर आ रहे हैं, वॉमिट सी हो जाती है, तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए, पानी लेते रहना चाहिए। और हर समय तो पानी नहीं अच्छा लगेगा आपको,
1: जी
0: क्योंकि आप पूरा खाली पेट होते हैं, तो कभी नींबू पानी पी लें, कभी जूस पी लें, कभी मट्ठा ले लें, कभी लस्सी ले लें, तो इन सभी चीज़ों को हम अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।
1: और दिन भर में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। अक्सर लोग व्रत उपवास के दौरान चाय कॉफी ज्यादा ले लेते हैं।
0: मेरे साथ में ये होता है जोस्ना कि आज व्रत है, कुछ खाना नहीं है, कुछ काम करना है, चलो भी थोड़ी सी एनर्जी चाहिए,
1: जी
0: तो चलो आधा कप चाय बनाते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और इससे व्रत उपवास के दौरान चाय कॉफी अधिक लेने से शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, कैफीन का इंटेक भी ज्यादा हो जाता है।
0: जी
1: इसके साथ साथ अगर इसके स्थान पर हम पुदीने का पानी लें, स्मूदीज लें या
0: जी
1: इलायची वाली चाय ले लें तो, और फलों का सेवन करें अधिक से अधिक करें, तो शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखने में पानी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, बात हो रही थी डिहाइड्रेशन की, तो इसको कम करने के लिए हम पानी भी खूब पी सकते हैं। और जहन में आ रही है कुछ शरबतों के बारे में भी ध्यान आ रहा है। एक छोटी सी भारतीय बेरी जो है वो गर्मियों में कुछ हफ्तों के लिए हमारे बाज़ार में मिलती है, और अभी वही मौसम है। अगर आपको खट्टा स्वाद पसंद है तो इससे बनने वाला ये बेहद ही ताजगी भरा पेय आपको ज़रूर पसंद आएगा। इससे बनता है आपका फालसा का शरबत।
2: और उड़ीसा की एक विशेष पारंपरिक फर्मेंटेड ड्रिंक भी है ज्योति, जो बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ साथ सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे जगन्नाथ टेम्पल में महाप्रसाद के रूप में भी परोसा जाता है, जिसका नाम है टोंका तोरानी
1: जी।
2: और साथ में हम अगर गोवा की तरफ चलें तो गोवा की दो चीज़ें दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं, वहाँ के खूबसूरत तट और दूसरी सोल कड़ी। इसकी हर चुस्की शरीर को भीतर से ठंडक पहुँचाने वाली मानी जाती है। सोल कड़ी केवल एक पेय नहीं, बल्कि गोवा और कोंकण क्षेत्र का समृद्ध पाक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

0: खबर सुनो, ये हम लाए हैं।
1: इसलिए सुनी
2: जी जी बिल्कुल
1: जी बिल्कुल, हमारे कार्यक्रम को पूरा करने में सहयोग दिया विक्रम सिंह भाटी HPT से, और FM से थे CL सोनी, और कंट्रोल रूम से सुनील जयपाल।
2: बिल्कुल, और आपकी दो दोस्त थीं ज्योत्सना और ज्योति, और हमारी आवाज़ को आप तक पहुंचाया सत्येंद्र चारण ने, और इस पूरी कार्यक्रम की थीम को तैयार किया मनीष कुमार सोलंकी ने। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी वाटिका, यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया, और मैनचेस्टर में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
5: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी, और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
6: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से

0: कीट गया एक बरस गया एक बरस।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
2: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
1: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
3: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस।
4: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
3: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
1: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की यह बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने यह बात कही। डॉ जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
5: The global south should be enabled.
6: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जैकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6ठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

0: गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रूपये और घायलों को 1-1 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
1: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके बहुत सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पर रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे।

0: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरूग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत, नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं।

0: की गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियाँ इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई। ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। ये कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधे का जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि, भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
1: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुई जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
2: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधे का।

0: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
1: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
0: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। बिजू, तुम सुनाओ।
1: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
0: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता। खड़े होकर सुनाओ।
1: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
0: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
1: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
0: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ, सामने।
1: जी।
0: कान खोल कर सुन लो तुम सब। यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
2: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
3: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
4: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
2: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए।

0: यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
1: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
0: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
1: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
0: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
1: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा। तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
2: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
1: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
0: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
3: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
1: अपनी साहित्य कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जीतेश जी नमस्कार।
4: नमस्कार।
1: तो जीतेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
4: जी,
1: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं।
4: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियाँ हैं
1: जी,
4: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
1: जी,
4: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को

0: बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है।
1: जी ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है?
0: जी और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
1: युगल और सहभागिता पद्धति,
0: जी इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
1: जी
0: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: जी इसके अलावा एक पद्धति और है।
1: हाँ हाँ बताइए।
0: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति,
0: जी इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
1: अच्छा।
0: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
1: जी
0: वो बहुत ही शानदार है।
1: अच्छा
0: जी।
1: तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जितेश कुमार जी। तो जितेश कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
1: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
1: गिजू भाई के अनुसार
3: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
1: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
5: श्रोताओं अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। लीजिए सुनिए देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर दिन के 3 बजे हैं। आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर हमारी आज की पहली सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे दूसरी सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 5 बजे प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा वाणी।

0: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, शाम की इस खूबसूरत घड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब वक्त है थोड़ा सुकून का। आप सुन रहे हैं हमारा इवनिंग शो, जहां हर शाम लेकर आती है एक नई बात और एक नई मुस्कान। इस प्रोग्राम का नाम है युववाणी, जहां हम दो रेडियो बडीज आपके साथ जुड़े हैं। मेरा नाम है आयुषी और आज मेरे साथ हैं
1: आपकी अपनी माधवी पुरोहित। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में ये प्यारा सा गाना।

0: सवाल ये है कि क्या ऑनलाइन फ्रेंड्स और रियल फ्रेंड्स एक जैसे होते हैं, तो माधवी क्या कहोगी इसके बारे में?
1: आयुषी, आज के टाइम में सुबह उठते ही हमारा सबसे पहला काम होता है सोशल मीडिया चेक करना। किसी की स्टोरी पर रिएक्शन देते हैं तो किसी की पोस्ट लाइक करते जाते हैं और धीरे धीरे नए दोस्त बनाते रहते हैं। कभी कभी हम किसी ऑनलाइन दोस्त से अपनी बातें भी शेयर कर लेते हैं जो हम आसपास के लोगों से भी नहीं कर पाते।
0: बिल्कुल, ऑनलाइन फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं और कई बार हमारी हॉबीज़ और इंटरेस्ट भी शेयर करते हैं, कभी गेमिंग के थ्रू, कभी सोशल मीडिया के थ्रू और कभी किसी ऑनलाइन कम्युनिटी के थ्रू। हम अच्छे दोस्त बन ही जाते हैं।
1: लेकिन आयुष ही एक बात बताइए, जब आपका दिन बहुत बुरा गुजर रहा हो, जब आप किसी कंधे की ज़रूरत हो, तब क्या एक इमोजी या टेक केयर वाला मैसेज भी काफ़ी होता है?
0: शायद नहीं, क्योंकि उस वक्त याद आता है वो दोस्त जो बिना कुछ कहे समझ जाता है, जो आपके घर आ जाता है, जो कहता है चल बाहर चलते हैं सब ठीक हो जाएगा। यही होते हैं मेरे अनुसार रियल फ्रेंड्स।
1: बिल्कुल, और रियल फ्रेंड्स वो नहीं जो आपकी अचीवमेंट्स पर क्लैप करें, रियल फ्रेंड्स तो वो होते हैं जो आपकी फेलियर्स में भी साथ खड़े हो, जो आपकी खुशी में, हंसी में और आपके दुख में भी रो दें।
0: लेकिन इसका मतलब माधवी ये भी तो नहीं कि हमारे जो ऑनलाइन फ्रेंड्स हमसे जुड़े हैं वो बुरे होते हैं। कई बार ऑनलाइन दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि वो ज़िंदगी भर का साथ बन जाती है। कुछ लोग ऑनलाइन मिलते हैं और बाद में बेस्ट फ्रेंड भी बन जाते हैं।
1: बिल्कुल, और दोस्ती का कनेक्शन इंटरनेट से नहीं, दिल से होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऑनलाइन फ्रेंडशिप को समझने और ट्रस्ट करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है।
0: लेकिन माधवी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आप रात की 2 बजे किसी मुसीबत में फंस जाओ, तो आप किसको कॉल करेंगे? मतलब अपने 5,000 फॉलोअर्स या फिर अपने किसी और सच्चे दोस्त को?
1: जवाब हम सभी जानते हैं आयुषी, मुसीबत के वक्त लाइक्स और कमेंट्स काम नहीं आते, उस वक्त तो सिर्फ वो लोग काम आते हैं जो दिल से आपके साथ खड़े होते हैं।
0: बिल्कुल, ऑनलाइन दुनिया हमें कनेक्ट करती है लेकिन रियल दुनिया हमें सपोर्ट करती है। ऑनलाइन दोस्त हमें समझ सकते हैं पर रियल दोस्त हमें महसूस भी कर सकते हैं।
1: और सबसे खूबसूरत बात ये है कि आज के ज़माने में ऑनलाइन और रियल फ्रेंडशिप एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, दोनों ही अपनी अपनी जगह है, बस ज़रूरत है सोचने की, कनेक्शन की।
0: बिल्कुल, जरूरत है एक सच्चे कनेक्शन की, इसीलिए फॉलोअर्स की गिनती से ज्यादा जरूरी है उन लोगों की गिनती जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहेंगे।
1: और याद रखिए, एक सच्चा दोस्त 1,000 ऑनलाइन कॉन्टैक्ट से ज़्यादा कीमती होता है।
0: बिल्कुल, ऑनलाइन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर होते हैं।

0: दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिन्हें वो अपनी दुनिया समझता है। उन रिश्तों के लिए वो अपना वक्त देता है, अपनी खुशियाँ कुर्बान करता है और कभी कभी तो खुद को भी भूल जाता है। और बस वैसे ही है आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की जिसका नाम था अभिनव।
1: अभिनव बहुत ही सिंपल और समझदार इंसान था। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो लोगों को समझता था। अगर कोई उदास होता तो उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता। अगर कोई नाराज होता तो उसे मनाना अपनी जिम्मेदारी समझता। उसके लिए रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं थे, बल्कि दिल से निभाने वाली जिम्मेदारी थी।
0: बचपन से ही उसने एक बात सीखी थी, रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। और इसी सोच के साथ वो बड़ा हुआ। हर जगह उसने लोगों को जोड़ा, समझाया और रिश्तों को बचाने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास भी नहीं हुआ कि लोग उसकी अच्छाई को उसकी आदत बना चुके थे।
1: जब भी कोई गलतफहमी होती, अभिनव ही फोन करता। जब भी कोई बात बिगड़ती, अभिनव ही समझौता करता। और जब भी कोई दूर जाता तो अभिनव ही उसे वापस लाने की कोशिश करता। हर बार सिर्फ अभिनव।
0: लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने उससे पूछा, यार अभिनव, क्या तुम कभी थकते नहीं हो? अभिनव ने हैरानी से पूछा, किस बात से? तो दोस्त बोला, हर बार सबको मनाते मनाते, सबके लिए खुद को बदलते बदलते।
1: अभिनव मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, अगर मेरे झुकने से रिश्ते बच जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उस वक्त उसे लगता था कि वो सही कर रहा है, लेकिन जिंदगी उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखाने वाली थी।
0: और बस इसी तरह समय बीतता गया, महीने सालों में बदलने लगे और अभिनव की जिंदगी में एक अजीब सी चीज होने लगी। वो हर किसी की पसंद बनने की कोशिश करते करते खुद की पसंद भूलने लगा।
1: किसी को उसका ज्यादा बोलना पसंद नहीं था तो उसने चुप रहना सीख लिया। किसी को उसके सपने समझ नहीं आते थे तो उसने सपने बताने ही छोड़ दिए। किसी को उसका इमोशनल होना पसंद नहीं था तो उसने अपनी फीलिंग दिखानी बंद कर दी।

0: और धीरे धीरे अभिनव बदलता गया। इतना बदल गया कि एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और सोचा, मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा। लेकिन फिर भी उसने खुद को समझा लिया, सब ठीक हो जाएगा।
1: लेकिन सच ये था कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था, पर अंदर से अभिनव रोज थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। उसकी हंसी कम हो रही थी, उसकी बातें कम हो गई थी और उसकी आंखों की चमक कहीं ना कहीं तो खो गई थी।
0: और फिर एक शाम वो अपनी छत पर अकेला बैठा था। सूरज ढल रहा था, हल्का हल्का अंधेरा छा रहा था और उसकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही लग रही थी, ना पूरी रोशनी ना पूरा अंधेरा, बस एक अजीब सी खामोशी।
1: उसने उस दिन पहली बार खुद से बात की और पूछा, अभिनव क्या तुम खुश हो? सवाल बहुत छोटा था लेकिन जवाब देना बहुत मुश्किल, क्योंकि सालों से उसने सबसे बात की थी, बस खुद से ही नहीं।
0: और उस रात उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। उस डायरी में उसके सपने लिखे थे, उसकी ख्वाहिशें लिखी थी, उसकी मुस्कुराहट लिखी थी और हर पेज उसे याद दिला रहा था कि कभी वो कितना जिंदा दिल हुआ करता था।
1: डायरी का एक पन्ना पढ़कर उसकी आंखें भर आई। उस पर लिखा था, मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ और अपने दिल की सुनना चाहता हूँ। अभिनव सोचने लगा, तब मैंने अपने दिल की सुनना बंद कर दिया।
0: उसने अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखा, हर जगह उसे एक ही चेहरा नजर आया, एक ऐसा इंसान जो सबको खुश रखने की कोशिश कर रहा था और उस भीड़ में कहीं अभिनव खुद को खो रहा था।
1: अगर मैं खुद ही खुश नहीं हूँ तो मैं किस चीज को बचा रहा हूँ? और इसी सवाल ने उसकी पूरी सोच बदल डाली।
0: फिर अगली सुबह अभिनव ने एक मुश्किल फैसला लिया। उसने उन लोगों के पीछे भागना बंद कर दिया जो उसकी कद्र नहीं करते थे। उसने उन रिश्तों को पकड़ कर रखना बंद कर दिया जो सिर्फ उसे ही तकलीफ दे रहे थे।
1: ये आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि कभी कभी किसी चीज को पकड़ कर रखने से ज्यादा हिम्मत उसे छोड़ने में लगती है, और अभिनव ने वही हिम्मत दिखाई।
0: लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ लोग बोले, तुम बदल गए हो। कुछ ने कहा, तुम सेल्फिश हो गए हो। और कुछ ने कहा, तुम हार गए हो।
1: लेकिन इस बार अभिनव चुप नहीं रहा। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं हारा नहीं हूँ, मैं बस खुद को खोना नहीं चाहता, मैं बस अपनी जिंदगी में खुद की भी एक जगह चाहता हूँ।
0: और धीरे धीरे अभिनव ने खुद के साथ वक्त बिताना शुरू किया, अपने पुराने सपने वापस उठाए, नई चीजें सीखी, अपनी पसंद के काम किए और सबसे जरूरी, खुद से दोस्ती कर ली।
1: महीनों बाद जब उसने फिर आईने में देखा तो उसे वही पुराना अभिनव नजर आया, वही मुस्कुराहट, वही चमक, वही सुकून जो कभी कहीं खो गई थी।
0: तब अभिनव ने समझा, रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन खुद से रिश्ता सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान खुद ही टूट जाए तो किसी और को संभाल ही नहीं सकता।
1: और उसने ये भी सीखा कि हर बार झुक जाना प्यार नहीं होता, हर बार चुप रह जाना समझदारी नहीं होती, हर बार सब कुछ सह लेना सैक्रिफाइस नहीं होता।
0: कभी कभी अपनी इज्जत के लिए खड़े हो जाना भी जरूरी होता है, कभी कभी बस अब और नहीं कहना भी जरूरी होता है, और कभी कभी किसी और को नहीं खुद को चुनना भी जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी
1: खुद से प्यार।

0: दोस्तों, हम अक्सर दूसरों को खुश रखने में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं।
1: लेकिन सच तो ये है कि जिस तरह हम दूसरों को प्यार और सम्मान देते हैं, उसी तरह खुद को भी देना ज़रूरी है।
0: खुद से प्यार करना मतलब परफेक्ट होना नहीं,
1: बल्कि अपनी कामियां और अपनी खूबियों दोनों को अपनाना है।
0: खुद से प्यार करना मतलब अपनी खुशी को भी इम्पोर्टेंस देना है।
1: और याद रखिए, जो इंसान खुद से प्यार करता है, वही दूसरों को भी सच्चा प्यार दे सकता है,
0: क्योंकि खुश रहना कोई लग्जरी नहीं।
1: बल्कि हर इंसान का हक है।
0: तो दोस्तों, अभी हमने कहानी सुनी थी अभिनव की, जिसमें बताया कि किस तरह उसे अपने खुद से प्यार करने में कितना स्ट्रगल फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा समय आ गया था उसकी लाइफ में कि वो खुद को ही भूल गया था। तो दोस्तों,
1: रिश्ता निभाना अच्छी बात है, लेकिन खुद को खोकर और किसी और को पाना कभी सही नहीं होता।
0: जो रिश्ता आपकी खुशी, सुकून और इज्जत छीन ले, उसे पकड़ कर रखना प्यार नहीं, खुद के साथ अन्याय है।
1: कभी कभी जिंदगी का सबसे बहादुर फैसला किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए चुनना होता है।
0: तो आखिर में याद रखिए कि खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं होता, और अपनी इज्जत को पहले रखना गलत भी नहीं होता।

0: अभी अभी हमें हमने सुना था कोकटेल टू मूवी का ये अरिजीत सिंह के आवाज़ में गाना तुझको। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, हम दो रेडियो बडीज आपके साथ जुड़े हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मेरा नाम है आयुषी और मेरे साथ है
1: और मेरा नाम है माधवी।
0: तो माधवी। अब मैं तुमसे एक दो सवाल करती हूँ, है ना, तुम उसका जवाब देना, मतलब तुम उसके बारे में क्या सोचती हो वो बताना।
1: बिल्कुल।
0: देखो, अगर आपको एक टाइम मशीन मिल जाए तो आप कहीं जाना पसंद करेंगे क्या, मतलब पास्ट में या फ्यूचर में कहाँ जाना पसंद करेंगी?
1: आयुषी, तुमने क्या इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। मुझे लगता है मैं सबसे पहले फ्यूचर में जाना पसंद करूंगी, ये देखने के लिए कि मेरी लाइफ 20 साल बाद दुनिया कैसी होगी।
0: अच्छा, और मैं शायद पास्ट में जाना चाहूंगी क्योंकि इतिहास के कुछ खास पलों को अपनी आंखों से देखना कितना रोमांचक हो सकता है।
1: जैसे कि आयुषी, ताजमहल बनते हुए देखना या फिर आजादी के समय का माहौल महसूस करना।
0: हाँ, हो सकता है ये भी। लेकिन एक सवाल और है मेरा तुम्हारे लिए कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी का कोई एक पल बदलने का मौका मिले तो क्या तुम ऐसा क्या बदलोगी?
1: शायद आयुषी मैं कुछ भी नहीं बदलूंगी, क्योंकि हमारी गलतियों की हमें हमेशा ज्यादातर सीख ही मिलती है।
0: हाँ, बात तो एकदम सही कही है, मतलब बहुत खूब बात कही है। और

0: फ्यूचर देखने की बात करें तो क्या आप अपना भविष्य पहले से जानना चाहोगी?
1: नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिंदगी का मजा तो उनके सरप्राइज में ही होता है।
0: ये तो बहुत शानदार बात कही है आपने। मुझे उम्मीद है हमारे लिसनर्स का भी यही जवाब होगा। साथ ही शायद इसीलिए टाइम ट्रेवल ना फिलहाल सिर्फ सिर्फ हमारी कल्पना और साइंस फिक्शन का हिस्सा हो सकता है।
1: और इस टॉपिक से हमें एक बात जरूर सीखने को मिलती है आयुषी, कि पास्ट से तो हमें सीखना चाहिए, फ्यूचर के लिए सपना देखो और प्रेजेंट में अपनी लाइफ को पूरी तरह जी लो।
0: अब इतना तुमने बता ही दिया है तो फिर फिलहाल प्रेजेंट में रह करके हम देखते हैं कि हमारा जो अगला आने वाला जो ये जो म्यूजिकल सॉन्ग है ये कौन सा है।

0: हम अपना वर्ड लेकर के हाजिर हो गए हैं। तो माधवी फटाफट से बता दो कि आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे क्या है।
1: आयुषी, आज का खूबसूरत शब्द है ब्लॉसम। ब्लॉसम
0: अच्छा, अब ये बताया है तो इसका मतलब भी बता दो।
1: का मतलब होता है खिलना, विकास करना या अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाना।
0: अच्छा, जैसे एक फूल धीरे धीरे खिलता है और अपनी खुशबू से सबका दिल जीत लेता है, वैसे ही हम भी मेहनत सीखना सीखने और पॉजिटिव सोच के साथ ब्लॉसम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना ब्लॉसम का मीनिंग।
1: बिल्कुल, आइए इसे एक सेंटेंस में हम समझने की कोशिश करते हैं। एवरी चाइल्ड हैज़ अ ब्लॉसम, यानी कि हर बच्चा ही एक ब्लॉसम है। उन्हें लव सपोर्ट की हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है।
0: बिल्कुल, कितनी प्यारी बात है ये। हर इंसान का अपना समय होता है चमकने का और आगे बढ़ने का, यानी कि जैसे हमारा है, आपका है, हम सभी का ब्लॉसम करने का एक टाइम होता है। तो हम जितना भी रेस में दौड़ ले, लेकिन सबकी टाइमिंग अलग होती है, सब अलग अलग टाइम पे अपने टाइम के अनुसार चमकेंगे और वो सब पा लेंगे जो हम चाहते हैं, है ना। तो माधवी, तुम भी अपने लाइफ में ब्लॉसम चाहती हो?
1: बिल्कुल, कौन नहीं चाहेगा अपने लाइफ में ब्लॉसम करना और खिल जाना, पूरी तरह अपनी हर मुकाम तक पहुंच जाना।
0: बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो अभी हमें सुन रहे हैं, वो सब भी अपनी लाइफ में एकदम ब्लॉसम की तरह, एक फूल की तरह खिल जाए और इतना इतने खूबसूरत दिखे कि जिन्हें वो चाहते हैं वो भी उन्हें बदले में उतना ही चाहे।

0: दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कई सारे सवाल जो थे आप सभी से भी और माधवी से भी किए थे, लेकिन इसी बीच एक और दिमाग में आया है मेरे सवाल, जो कि है कि अगर आज आपको अपने फ्यूचर वाले वर्जन से बात करने का मौका मिले तो आप उससे क्या पूछोगे?
1: और अगर आप अपने फ्यूचर वाले खुद को एक चिट्ठी लिखें तो उसमें क्या क्या लिखेंगे? सपने, उम्मीदें या फिर कुछ सवाल?
0: शायद सबसे पहला सवाल यही होगा, क्या तुम खुश हो?
1: बिल्कुल, क्योंकि जिंदगी में हम सब कुछ पाने की दौड़ में बस लगे रहते हैं, लेकिन अक्सर खुशी को ही भूल जाते हैं।
0: मैं अपने फ्यूचर वाले मुझे लिखना चाहूंगी कि मुझे उम्मीद है कि तुमने अपने सपनों का पीछा करना कभी नहीं छोड़ा
1: और
0: होगा।
1: मैं लिखूंगी, अगर सपने पूरे ना भी हो तो उम्मीद करती रहूंगी, तुमने कोशिश करना तो कभी नहीं छोड़ा होगा।
0: अगर फ्यूचर वाले मुझे मुझे लिखना हो तो मैं उससे ये पूछूंगी कि बताओ, क्या तुम आज भी उन लोगों की कदर करते हो जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़े थे?
1: और मैं लिखूंगी, क्या तुमने मम्मी पापा के चेहरे पर वो मुस्कान लाई जिसके लिए तुम आज इतनी मेहनत कर रहे हो?
0: क्या तुमने अपनी पहचान बनाई? ये भी पूछूंगी मैं,
1: और सबसे जरूरी, क्या तुमने खुद को संभाल कर रखा है?
0: क्योंकि दुनिया को खुश करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हम खुद को ही खो दें।
1: सही कहा, सफलता अच्छी बात है, लेकिन सुकून उससे भी ज्यादा जरूरी है।
0: और अगर फ्यूचर में कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ मुश्किल हो रहा है,
1: तो याद रखना, आज वाला तुम पूरे विश्वास के साथ तुम्हारे लिए सपने देख रहा है,
0: हाँ, और वो मानता है कि तुम हर मुश्किल से लड़ सकते हो,
1: और हर गिरने के बाद फिर से उठ सकते हो,
0: तो फ्यूचर वाले मुझे सुनो,
1: जहां भी हो, जैसे भी हो,
0: बस इतना याद रखना,
1: कि सपने बदल सकते हैं, रास्ते बदल सकते हैं।
0: लेकिन अपनी इंसानियत, अपनी पहचान और खुद पर विश्वास कभी मत खोना। तो दोस्तों, आज का हर छोटा कदम ही कल के बड़े सपनों की एक नींव बनाता है। इसी के साथ हम भी आपको ले चलते हैं हमारे आने वाले अगले म्यूजिकल सॉन्ग की ओर।

0: दोस्तों, आजकल हम अपनी रोज़ वाली जो डेली वाली लाइफ है उसमें इतने बिजी हो चुके हैं कि मुझे लगता है इतना बिजी होते वक्त ना बीच में हमें खुद से एक सवाल करना चाहिए कि क्या हम सच में खुश हैं या सिर्फ हम बिजी ही हैं।
1: सुबह अलार्म बजाते हैं, हम उठते हैं, कॉलेज, ऑफिस या फिर काम पर चले जाते हैं,
0: दिन भर असाइनमेंट्स, मीटिंग्स, कॉल्स और नोटिफिकेशन में उलझे रहते हैं,
1: और रात को सोने से पहले कहते हैं कि आज तो बहुत बिजी थे,
0: लेकिन कभी हमने खुद से पूछा है आज मैं खुश भी था या नहीं?
1: आज हम सबके पास वक्त देखने के लिए घड़ी है,
0: लेकिन खुद के लिए वक्त नहीं है,
1: हम सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं,
0: पर अपनी फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड नहीं है,
1: कभी-कभी लगता है कि हम जिंदगी जी नहीं रहे,
0: बस उसे कंप्लीट करने की रेस में दौड़ रहे हैं,
1: हम कहते हैं बस ये काम हो जाए फिर तो खुश हो जाऊंगा,
0: फिर कहते हैं बस ये एग्जाम निकल जाए,
1: बस प्रमोशन मिल जाए,
0: और इसी बस में पूरी जिंदगी निकल जाती है।
1: खुशी की कोई डेस्टिनेशन नहीं है,
0: खुशी तो सफर का एक हिस्सा है,
1: एक कप चाय के साथ बैठना,
0: पुराने दोस्त से बात करना
1: माँ के साथ कुछ पल बिताना।
0: या बिना किसी वजह के मुस्कुरा देना, यही तो छोटी छोटी खुशियां हैं।
1: आज हम बिजी रहने को अचीवमेंट समझने लगे हैं,
0: लेकिन बिजी होना और खुश होना दोनों अलग अलग बातें हैं।
1: क्योंकि कैलेंडर भर जाना
0: दिल भर जाने की गारंटी नहीं देता।
1: तो आज घर जाकर सिर्फ एक सवाल खुद से पूछिए,
0: मैं सच में खुश हूं या सिर्फ बिजी हूं।
1: और अगर

0: पर जवाब ना मिले
1: तो शायद जिंदगी को थोड़ा धीरे जीने की जरूरत है। जिंदगी सिर्फ काम पूरे करने का नाम नहीं है, बल्कि उन पलों को महसूस करने का नाम है जो हमें सच में खुश करता है।
0: बिजी रहना सफलता नहीं निशानी हो सकती है, लेकिन खुश रहने एक अच्छी जिंदगी निशानी है।
1: बिल्कुल, बिजी रहना सफलता की निशानी हो सकता है, लेकिन खुश रहना एक अच्छी जिंदगी की निशानी है। क्या बात कही है माधवी। तो इसी इसी बातचीत के चलते हम दोनों भी आज हम खुद से पूछेंगे कि हम सच में खुश भी है या फिर सिर्फ बिजी है। लेकिन मेरा जवाब इसमें ये होगा कि मैं तो खुश भी हूँ, ऐसा बिजी रहकर जहाँ पर मुझे मेरे रेडियो पर अपने लिसनर से बात करने को या फिर अपनी बात उनके दिल तक पहुँचाने को मिले। फिलहाल में एक गाना आ रहा है जो बहुत प्यारा सा है, आपके दिल तक पहुंचाती हूँ।

0: दोस्तों, आज हमने इतनी सारी बातें बातें सुनी, कही आपसे, है ना। तो जिसमें हमने कहानी सुनी, तो जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से अभिनव जो है खुद से प्यार करने की कोशिश करता है, तो इसी में कुछ जो पंक्तियाँ हैं हमें मिली हैं वो हम आपसे भी साझा करना चाहेंगे, जो कि है कि मैंने ज़िंदगी से पूछा तो इतनी मुश्किल क्यों है।
1: जिंदगी मुस्कुरा कर बोली ताकि तुम्हें अपनी ताकत का पता चल सके।
0: मैंने पूछा और खुशियाँ इतनी छोटी क्यों हैं।
1: जिंदगी बोली ताकि तुम उन्हें ढूंढना सीख सको।
0: तो दोस्तों, इसी में आगे और कुछ पंक्तियाँ हैं, उसी को हम आगे और ले चलते हैं।
1: जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल खुद के लिए भी रखना,
0: हर मंजिल की तलाश में रास्तों का मजा भी चखना।
1: हर दिन कुछ पाने की चाह में जो है उसे मत खो देना।
0: कल की चिंता करते करते आज को मत रो देना।
1: कभी धूप में बैठ मुस्कुराना, कभी बारिश में भीग जाना।
0: छोटी छोटी खुशियों को दिल से गले लगाना।
1: हर किसी को खुलकर जरूर नहीं,
0: हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं, कभी कभी खुद की मुस्कान भी जरूरी होती है।
1: थोड़ा सा वक्त अपने लिए।
0: थोड़ा सा प्यार खुद के लिए।
1: जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे जीने की फुर्सत होनी चाहिए।
0: तो दोस्तों, आखिर में हम इन सभी पंक्तियों से आपको यही बताना चाहेंगे कि खुशियाँ बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।

0: दोस्तों, अभी अभी आपने ये जो गाना सुना है, तेरा नाम दूँ, ये मूवी मूवी से था जिसका नाम था एंटरटेनमेंट। तो बस इसी से मुझे याद आया कि हम जो आपका एंटरटेन कर रहे हैं वो बस यहीं तक। अब हमें दीजिए इजाज़त जाने की। आपके ये दो रेडियो बडीज आपसे जुड़े थे, मेरा नाम है आयुषी और मेरे साथ थी।
1: मेरा नाम है माधवी।
0: तो दोस्तों, अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे इसी मुस्कुराहट के साथ अगले दिन भी।

0: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में। दोनों ही समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से

0: लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंताकयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरूणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदाम्बी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the Free Trade Agreement, FTA, with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. Addressing the India Global Forum, IGF,

शाम 7 बजे से आप सुनेंगे आईसीसी वीमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के मध्य ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जाने वाली मैच का सीधा प्रसारण।

और अब नजर डालते हैं कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। कल सवेरे 6 बजे 6:05 पर होगा श्री रामचरितमानस। 6:15 पर आप सुनेंगे सुविचार के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

सवेरे 7 बजे होगा कुछ बातें कुछ गीत और मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम नमस्कार आप सुनेंगे 8:30 पर। नशीली दवाओं में के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर भेंटवार्ता सुनेंगे। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जनरल डायरेक्टर घनश्याम सोनी से संजय व्यास की बातचीत। विषय रहेगा संश्लेषित मादक द्रव्य रोकथाम और जागरूकता।

किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा कृषि जगत दिन में 1:05 पर, और महिलाओं के लिए कार्यक्रम गणगौर आप सुनेंगे 1:15 पर।

हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए प्रस्तुत है समूह स्वर में देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देश गान। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोवाट्स पर। संस्कृत में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम् प्रवाचकः कृष्ण प्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्याः वार्ताः। अद्य संविधान हत्या दिवसः आचर्यते। आपातकालकाले लोकतांत्रिक

0: मूल्यानां रक्षयन्त्रिभ्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना श्रद्धाञ्जलिः समर्पिता। विदेश कार्यमंत्री डॉ एस जयशंकर वैश्विक समस्यानां मध्ये दृढ़तर सहयोगस्य आवाहनं कुर्वन् दक्षिण कोरिया देशस्य जेजू मंचे वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य उद्घोषश्च अकरोत्। भारतस्य ब्रिक्स 2026 इत्यस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं गुरुग्राम नगरे ब्रिक्स ऊर्जा मन्त्रिणां सम्मेलनम् आरभत। वेनेजुएला देशे एकस्यानन्तरं अपरत्वेन प्रबलः भूकम्पः आगतः येन बहूनि भवनानि पतितानि। देशेन आपातकालस्य च घोषणा कृता। दक्षिण अफ्रीका देशः प्रथमवारं फीफा विश्व चषक क्रीडायाः नॉकआउट इति चरणं प्रति अगच्छत्। मोंटेरे नगरे दक्षिण कोरिया देशं एक शून्यांकाभ्यां पराजयत। अपि च अद्य सायंकाले मैनचेस्टर नगरे आईसीसी महिला टी20 विश्व चषक क्रिकेट क्रीडायाः ग्रुप ए क्रीडायां भारतं बांग्लादेशेन सह क्रीडति। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य संविधान हत्या दिवसः आचर्यते। पञ्चसप्तत्युत्तरैकोनविंशतितमे वर्षे जून मासस्य पञ्चविंशे दिनांके यदा भारतस्य संविधानस्य पददलनं जातं तदा किं जातमिति एतद्दिनं स्मारयति। आपातकाले आधिक्येन पीडिताय प्रत्येकस्मै जनाय श्रद्धाञ्जलिं दातुम् अपि एषः दिवसः अस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी, गृहमन्त्री अमितशाहः च अद्य आपातकालस्य काले लोकतान्त्रिकमूल्यानां रक्षणार्थं दृढतया स्थितेभ्यः सर्वेभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवन्तः। सामाजिक प्रसार माध्यमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना उक्तं यत् आपातकालः संविधानस्य उपरि प्रत्यक्षः आक्रमणः आसीत्। सः अवदत् यत् अवसरेऽस्मिन् नागरिक स्वातन्त्रस्य निलम्बनम्, अभिव्यक्ति स्वातन्त्रस्योपरि प्रतिबन्धः, राजनैतिक नेतृणां, पत्रकाराणां, सामाजिक कार्यकर्तृणाञ्च बन्धनम् अभवत्। भाजपेति दलेन अद्य आपातकालस्य विषये कांग्रेस पक्षस्य उपरि प्रहारं कुर्वता भारतीय इतिहासस्य कृष्णोऽध्यायः इत्युक्तम्। नवदेहली नगरस्य पार्टी मुख्यालये प्रसार माध्यमान् सम्बोधयन् भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता रविशंकर प्रसादः अवदत् यत् आपातकालस्य तात्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी वर्यायाः आसन्दं रक्षितुं न्यायपालिकायाः उपरि आक्रमणं जातम्। प्रसारमाध्यमानि पीडितानि। विपक्षस्य नेतारः कारावासिनश्च कृताः। आपातकाले प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदीवर्यस्य भूमिकायाः प्रशंसां कुर्वन् श्रीप्रसादः अवदत् यद् मोदीवर्यः गुजराततः उत्तरभारतं यावत् उल्लेखनीयरूपेण प्रयत्नान् अकरोदिति।
1: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना संविधान हत्या दिवसस्य अवसरे पूर्व प्रधानमन्त्रिणा अटल बिहारी वाजपेयी वर्येण लिखितायाः कवितायाः पंक्तयः पठिताः। सामाजिक प्रसार माध्यमे श्रीमोदी अवदत् यत् एषा कविता न केवलं पंक्ति संग्रहः अपितु आपातकाले लोकतन्त्रस्य उपरि आरोपितायाः वेदनायाः श्वसनावरोधस्य प्रतिबन्धानाञ्च सजीव अभिव्यक्तिः अस्तीति।
2: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
3: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सौम्येव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अवदत् यत् विश्वः

0: शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों की मासिक सम्मान निधि बढ़ाकर 25,000 रूपये करने की घोषणा की। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर के कुंदनपुरा में देश के पहले आधुनिक एग्री पीवी प्लांट का उद्घाटन किया। और प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक प्री मॉनसून गतिविधियों का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के ऊर्जा क्षेत्र के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट मजबूत ढांचे और भंडारण प्रणाली पर तेजी से काम कर रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब तक 6 करोड़ से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। ब्रिक्स के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर मंथन किया जा रहा है। ये बैठक कल भी जारी रहेगी। देश में 1975 में लगाए गए आपातकाल की वर्षगांठ के मौके पर लोकतंत्र सेनानियों को नमन किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में भी लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह रखा गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान और प्रबंधन संस्थान में हुए इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान निधि बढ़ाकर 25,000 रूपये मासिक करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त उन्हें चिकित्सा मद में 5,000 रूपये माहवार भी दिए जाएंगे।
1: लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि को हमने, हमारी प्रदेश की सरकार ने उसको भी बहाल किया। अब हम प्रदेश की सभी लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रूपये मासिक पेंशन और 4,000 रूपये की मासिक चिकित्सा सहायता देते हैं। आज से हम इसको 25,000 रूपये और 5,000 रूपये चिकित्सा के 30,000 रूपये आज से आपको मिलेंगे।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सवाईमाधोपुर में अभियोजन भवन का लोकार्पण किया। कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए गए इस भवन में राजस्थान अभियोजन अधिकारी एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह भी रखा गया। इस अवसर पर श्री बिरला ने अभियोजन प्रकरण प्रबंधन प्रणाली का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश में दंड संहिता को न्याय संहिता में बदलने से न्यायिक प्रक्रिया त्वरित, सहज और सुलभ हुई है। उन्होंने कहा कि समाज के गरीब तबके को समय पर न्याय दिलाना अभियोजन की प्राथमिकता है।
2: ये दो ऐसे महत्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के पहिए हैं कि अगर ये त्वरित न्याय दिलाने की दिशा की ओर काम करने लगे तो समाज के सभी व्यक्तियों को न्याय त्वरित मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने कई तकनीकी विज्ञान का प्रयोग कर अपराधी बच न सके, उसके साक्ष्यों को कोई खत्म न कर सके, इसके लिए पहली बार फॉरेंसिक लैब बनी है।
0: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने राजस्थान पीटीईटी 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। इससे राज्य के 900 से अधिक बीएड कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर में वीएमओयू क्षेत्रीय कार्यालय से ये नतीजे जारी किए। उन्होंने अव्वल रहने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से फोन पर बातचीत कर उन्हें बधाई दी। उधर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम भी आज जारी किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर में शिक्षा संकुल से ये नतीजे जारी किए। इस अप्रैल और मई महीने में हुए इस परीक्षा में लगभग 83 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की सचिव डॉ अरुणा शर्मा ने बताया कि ऑन डिमांड परीक्षा करवाने में स्टेट ओपन बोर्ड ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।
3: स्टेट ओपन बोर्ड में पहला स्थान हमने पूरे देश में प्राप्त किया है। अच्छा, जो है मार्कशीट और प्रवेश पत्र, जिसमें कई बार डमी कैंडिडेट भेजते हैं, तो उसमें हमने QR कोड लगाया है। प्रवेश पत्र में जैसे ही उस कोड को आप स्कैन करेंगे, उसकी पूरी डिटेल उसमें आ जाएगी और मार्कशीट की भी, तो ये फुल प्रूफ एक तरह से इसको करने का पूरा प्रयास किया है। तो आज हम लगभग 84,966 बच्चों

0: योजना में जल्द आज निकालेंगे।
1: शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर वर्ष उन शिक्षकों को दिए जाते हैं जिन्होंने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार और समर्पण का परिचय दिया है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े आज पाली जिले के सादड़ी में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संतों और गौरक्षा आंदोलन के बारे में अपने विचार साझा किए। इसके बाद श्री बागड़े राजसमंद के कुंभलगढ़ पहुंचे। उन्होंने दुर्ग परिसर स्थित महाराणा प्रताप की जन्मस्थली का अवलोकन किया। श्री बागड़े ने दुर्ग अधिकारियों को आने वाले देशी विदेशी सैलानियों के लिए सुविधाओं का विस्तार करने के भी निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पेज पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर के कुंदनपुरा में देश के पहले आधुनिक एग्री पीवी प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम कुसुम योजना के तहत 600 केवी क्षमता वाले इस मॉडल से किसान सोलर पैनल से बिजली बनाने के साथ आसानी से फसल भी उगा सकते हैं। इस मौके पर श्री नागर ने कहा कि इस नई तकनीक में सोलर पैनलों को ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। इससे फसलों तक भी पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी पहुंच रही है। इस मॉडल से किसान बिजली से अतिरिक्त आय के साथ फसल उत्पादन आसानी से जारी रख सकेंगे।
2: किसान ने जो अपनी 600 किलोवाट का प्लांट था वो बस्सी के पास में कुंदनपुरा गांव में, और वहां उस किसान ने अपने एग्जिस्टिंग प्लांट को हाइट दे करके और एक नवाचार किया है, उसको लगभग 11 फीट तक ऊंचा उठाया है और उसके बाद उसने उसमें खेती करना प्रारंभ किया है कि किसान अपनी उपजाऊ खेती में भी सोलर प्लांट लगा करके उसकी हाइट बढ़ा करके नीचे अपनी खेती कर ले और उसके ऊपर सोलर से जो बिजली पैदा होती है उस भी आय बढ़ा ले। ये एक अच्छा इनोवेशन है और इसको आगे बढ़ावा मिलना चाहिए और इस किसानों को और इसकी तरफ प्रेरित करते हुए इस पर काम करने की अभी आगे जरूरत है।
1: राज्य में बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और किसान अनुकूल बनाया जाएगा। आज जयपुर में पंत कृषि भवन में राजस्थान बीज और जैविक प्रमाणीकरण संस्था के संचालन मंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। कृषि और उद्यानिकी सचिव मंजू राजपाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक पर और ब्यौरा दे रहे हैं न्यूज डेस्क से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर।
3: प्रदेश में बीज प्रमाणीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से बीज प्रयोगशाला जांच और ग्रो आउट टेस्ट GOT नमूना जांच को समानांतर रूप से संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बीज प्रमाणीकरण के लिए लागू क्रॉप कैलेंडर में आवश्यक बदलाव करने का फैसला भी किया गया है। इससे विभिन्न फसलों के बीज समय पर प्रमाणित होकर किसानों को मिल सकेंगे और खेती किसानी में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होगी।
1: और अब मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 5-7 दिनों में और सक्रिय होने तथा पूर्वी और मध्य भारत में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। इस बीच राज्य में भी प्री मानसून गतिविधियां जोर शोर से जारी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 4-5 दिनों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ झोंकेदार हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बरसात का सिलसिला बने रहने के आसार है। पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं जुलाई के पहले सप्ताह में राज्य के कई भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। इस बीच आज दोपहर में राजधानी जयपुर में मौसम बदला और आंधी के साथ करीब 1.25 घंटा तेज बरसात हुई। झमाझम बारिश से शहर में कई जगह पानी भर गया। उधर कोटपुतली बहरोड में भी धूल भरी आंधी के साथ रिमझिम बारिश का दौर चला। कल भरतपुर, नागौर, सीकर, चूरू और श्रीगंगानगर के कुछ हिस्सों में 1-1 इंच और उससे ज्यादा पानी बरसा। निर्जला एकादशी के अवसर पर प्रदेश भर में आज श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और दिन भर दान पुण्य का दौर चला। जगह जगह सामाजिक संगठनों और लोगों ने छबील लगाकर राहगीरों को शीतल पेय वितरित किए।

0: हिजला एकादशी पर जल सेवा का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं मुहर्रम का पर्व कल मनाया जाएगा। ये इस्लामिक नववर्ष के 10वें दिन आशूरा को मनाया जाता है। करबला की जंग में हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में ये दिन अकीदत के साथ गमगीन माहौल में मनाया जाता है। इस मौके पर ताजिए भी निकाले जाते हैं। राजधानी जयपुर में मुहर्रम के मौके पर करीब 300 छोटे बड़े ताजियों का जुलूस निकाला जाएगा, जिन्हें देर रात कल करबला मैदान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत के पर्व मुहर्रम को शांति और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की है। पाली के गिरीश रल और राहुल बारेसा ने वेस्ट जोन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद में हुए इस स्पर्धा में गिरीश ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, वहीं राहुल ने कांस्य पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इसके तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से बढ़ाया गया है, जिससे नकली और घटिया दवाओं पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। इसके QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे में दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू हुई। ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और नवाचार पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों की मासिक सम्मान निधि बढ़ाकर 25,000 रूपये करने की घोषणा की। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर के कुंदनपुरा में देश के पहले आधुनिक एग्री PV प्लांट का उद्घाटन किया और प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक प्री मॉनसून गतिविधियों का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बूंदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। बूंदी ने कल अपना 785वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। शुरुआत गढ़ गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुई। इस अवसर पर जिले की सुख समृद्धि की कामना की गई। इसके बाद पर्यटन सूचना केंद्र में फोटो और चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में ड्रोन कैमरे से ली गई तारागढ़ किला, रानी जी की बावड़ी, नवल सागर, जैत सागर और अन्य ऐतिहासिक स्थलों की तस्वीरों को लोगों ने देखा। बूंदी चित्रशैली पर आधारित चित्रों ने जिले की सांस्कृतिक पहचान को भी सामने रखा। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस साल बूंदी जिले के 885 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया है। इनमें 788 वरिष्ठ नागरिक रेल मार्ग से और 97 वरिष्ठ नागरिक हवाई मार्ग से विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी की गई। यात्राओं का कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। जिले भर में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों और नगरीय क्षेत्रों में लग रहे इन शिविरों में पात्र लोगों को एक ही स्थान पर कई विभागों से जुड़ी सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। भूमि संबंधी प्रकरण, पट्टे, नामांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने विभिन्न शिविरों का पिछले दिनों निरीक्षण किया और अधिकारियों को प्राप्त प्रकरणों का समय पर समाधान करने के निर्देश दिए। बड़ी संख्या में लोग इन शिविरों का लाभ उठा रहे हैं। पिछले दिनों जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक में विभिन्न पेयजल योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। अधिकारियों को हर घर नल कनेक्शन, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों तक पेयजल सुविधा समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। विभागों के बीच समन्वय बनाकर कार्यों को तय समय में पूरा करने पर जोर दिया गया। साथ ही जल योजनाओं की नियमित निगरानी करने को कहा गया। मॉनसून के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारी

0: तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला कलेक्टर ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर नालों की सफाई का निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बारिश शुरू होने से पहले सभी नालों की सफाई पूरी कर ली जाए ताकि जल भराव की स्थिति नहीं बने। जहां आवश्यकता है वहां नालों के सुधार और मरम्मत का काम भी किया जा रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वे कचरा नालों में नहीं डालें और शहर को साफ रखने में सहयोग करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य समारोह खेल संकुल में हुआ। इससे पहले 50 दिनों तक योग जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान विद्यालयों, महाविद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, ऐतिहासिक स्थलों और विभिन्न संस्थानों में नियमित योगाभ्यास कराया गया। बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों ने इनमें भाग लिया। योग प्रशिक्षकों ने लोगों को नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और दूरसंचार सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में जिले में तेजी से काम हो रहा है। जिले की सभी ग्राम पंचायतों को बेहतर फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इससे इंटरनेट सेवाएं अधिक सुचारू होंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार होगा। महिला अधिकारिता विभाग ने जिले की कुछ ग्राम पंचायतों में साथिन के रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक महिलाएं निर्धारित तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। विभाग ने पात्र महिलाओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। इधर दिव्यांगजन के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत आवेदन शुरू हो गए हैं। योजना का उद्देश्य दिव्यांगजन को आसान आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है। मौसम में बदलाव के साथ किसान खेतों में खरीफ फसल की बुआई की तैयारियों में जुट गए हैं। कृषि विभाग किसानों को समय पर बुआई, उन्नत कृषि पद्धतियों और फसल प्रबंधन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करा रहा है ताकि नई फसल की शुरुआत बेहतर तरीके से हो सके। इसके साथ ही बूंदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, भारत री सदारत माए ब्रिक्स देशां रा ऊर्जा मंत्रियां री मीटिंग गुरुग्राम माए सरूफी। ऊर्जा सुरक्षा, लगातार विकास और नवाचार रा बारा माए विचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लोकतंत्र सेनानियां री हर महीना दी जावण वाली सम्मान निधि बधार 25,000 रुपया करण रो ऐलान कीनो। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जयपुर रा कुंदनपुरा माए देश रा पहला आधुनिक एग्री पीवी प्लांट रो उद्घाटन कीनो। और प्रदेश माए आवता 4-5 दिन ताई चौमासाओं पहली री हलचल चालते रहवन रो अनुमान। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल कहो है कि ऊर्जा माली, सामाजिक बरकत और इंसान रा विकास सारू घनी खास है। वे आज गुरुग्राम माए ब्रिक्स देशां रा ऊर्जा मंत्रियां री 11वीं मीटिंग माए बोल रहा हा। ऊर्जा मंत्री कहो कि लगातार विकास सारू किफायती, भरोसेमंद और टिकाऊ ऊर्जा जरूरी है। वे कहो कि भारत आवता भगत माए ऊर्जा हल्का सारू नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट मजबूत ढांचा और भंडारण प्रणाली माथे तेज यूं काम कर रियो है। मनोहर लाल कहो कि देश माए हाल ताई बिजली रा 6 करोड़ों बत्ता स्मार्ट मीटर लगातिया चिया है। ब्रिक्स देशारा नुमाइंदा री आ मीटिंग काली फैला। साल 1975 माए देश माए लगाई चिया आपातकाल री वर्षगांठ रे मौके आज लोकतंत्र सेनानियां ने नमन करी चियो। ये मौके राजधानी जयपुर माए लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह राखी चियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ये कार्यक्रम माए शामिल फिया। ये मौके मुख्यमंत्री लोकतंत्र सेनानियां री मान निधि री रकम बधार 25,000 रुपया महीना करण रो ऐलान कीनो। वह कहो का ईसा गई लोकतंत्र सेनानिया ने इलाज सारोई हर महीना 5,000 रुपया दिया जावेला।
2: लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि को हमने, हमारी प्रदेश की सरकार ने उसको भी बहाल किया। अब हम प्रदेश की सभी लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन और 4,000 रुपये की मासिक चिकित्सा सहायता देते हैं। आज से हम इसको 25,000 रुपये और 5,000 रुपये चिकित्सा के 30,000 रुपये आज से आपको मिलेंगे।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सवाई माधोपुर में अभियोजन भवन

जनता ने सौंपियो। कलेक्ट्रेट परिसर में बनाई जाई भवन में राजस्थान अभियोजन अधिकारी एसोसिएशन रो शपथ लेवन रो जलसोई राखी चियो। ए मौके श्री बिरला अभियोजन प्रकरण प्रबंधन प्रणाली री शुरुआती कीनी। वे कहो कि देश में दंड संहिता ने न्याय संहिता में बदलनो न्याय देवण रो काम तेज और आसान भी।

0: है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ
0: जी,
1: रेडियो पे इतने वर्षों के बाद आज मैं आया हूँ। वो बात दूसरी है कि रेडियो से एज ड्रामा आर्टिस्ट और एज कंपेयर मैं जुड़ा रहा हूँ, वर्षों तक जुड़ा रहा हूँ, लेकिन वर्षों के बाद आज आया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे श्रोताओं का भी आज बहुत शुक्रिया कि आज आपसे फिर बात करने का मुझे मौका मिला है।
0: जी शुक्रिया तो आपका है कि आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला है। और सबसे पहले तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बड़ा मजा आ रहा है देश में। आज इस तरह की घटनाएं सुबह से शाम तक नए नए इवेंट्स सुनने को देखने को मिल रहे हैं। और रेडियो जो है अब मैं देख रहा हूँ, बीच में कुछ पहले थोड़ा सा स्लो हुआ था, आज फिर लोग जो हैं रेडियो की तरफ भाग रहे हैं और रेडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं।
0: जी तो देखिए ना, आपने आकाशवाणी ने अपना 90 वर्ष का जो सफर है वो कितना खूबसूरती के साथ तय भी कर लिया है
1: जी।
0: और इस 90 वर्ष के सफर पर हम सभी जश्न भी मना रहे हैं।
1: जी जी जी, जी।
0: तो रेडियो से आप कैसे जुड़े और रेडियो से जो जुड़ाव था वो कैसे हुआ?
1: हुआ क्या कि मैं पहले कॉलेज में थिएटर करता था और थिएटर के साथ साथ रोहतक रेडियो स्टेशन पर जब वो पता चला कि वहां पर भी आर्टिस्टों को वो लेते हैं, उनका ऑडिशन होता है, तो हरेक की मर्जी होती है, हरेक का दिल करता है, क्योंकि हमारे लिए रेडियो उस वक्त पे बहुत बड़ी चीज थी
0: जी।
1: क्योंकि रेडियो को हम जो है सिर्फ सुनाई हमने जिंदगी भर, क्योंकि मेरे फादर जो है वो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे तो वो रेडियो की न्यूज डेली सुनते थे, तो हमें एक लगाव था और हम तो फिर हवा महल और ये और वो बहुत सुनते थे, तो उससे हमें लगा कि हम भी कोशिश करें। और अगर शॉर्टकट बताऊं तो मैंने रेडियो स्टेशन पे ऑडिशन दिया और मैं फिर पहले बी ग्रेड मैंने पास किया, फिर बी हाई मैंने पास किया
0: ड्रामा में जी।
1: और ड्रामे के बाद फिर एज अनाउंसर भी मैंने वहां ऑडिशन पास किया और रेडियो के लिए बहुत प्ले भी मैंने लिखे।
0: तो अच्छा, लिखे भी आपने?
1: हाँ, लिखे भी मैंने,
0: किए भी एक्ट भी किए
1: मैं, क्योंकि आर्टिस्ट था तो मैंने किया। तो रेडियो का मेरा सफर बहुत ही बढ़िया रहा। और मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं कि रेडियो हमारे पूरे देश में बहुत ही, अगर आप जाओगे अंदर जैसे ही एंट्री लोगे रेडियो स्टेशन में, आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। तो ऐसा है हमारा रेडियो,
0: बिल्कुल जड़ों से जुड़ा है, हमारी जड़ों से, देश की जड़ों से जुड़ा है, हमारी संस्कृति से जुड़ा है और आज भी रेडियो ने अपनी संस्कृति को छोड़ा नहीं।
1: जी
0: सर, आप रेडियो से जुड़े रही, रेडियो से आपको इतना प्यार था, लेकिन आपने जीवन पर्यंत जो सेवाएं दी वो दूरदर्शन के लिए दी, तो ये कंट्रास्ट किस तरह से हुआ, कैसे रेडियो की दुनिया से दूरदर्शन की दुनिया में आप पहुंचे और वहां जाकर चूंकि आप ड्रामा के आर्टिस्ट थे लेकिन आपने न्यूज चैनल को चुना और आपने पूरी सेवाएं दी, तो इसके बारे में बताइए हमें।
1: बहुत ही रोचक किस्म की कहानी है। मैं फिल्म की लाइन में चला गया था।
0: अच्छा
1: जी। और फिल्म मैंने बना ली थी, मेरी फिल्म का नाम था छन्नो, जो रीजनल लैंग्वेज में नहीं लेकिन डायलेक्ट में थी, हरियाणवी डायलेक्ट में। तो उसके बाद क्योंकि सब कुछ खुद ही करना पड़ा था, एक तरह से कहा जाए तो मैं थक भी गया था
0: फिल्म बनाते हुए।
1: तो मुझे किसी ने कहा कि आप यूपीएससी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करो। तो मुझे एक बार तो लगा कि यार, मतलब मैं कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं करो, आसान नहीं है। तो जब उन्होंने कहा आसान नहीं है तो मुझे लगा अरे ये चैलेंज है तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो खैर मैंने अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हो गया ड्रामे में। और जब ड्रामे में सिलेक्शन हुआ तो मेरी पहली पोस्टिंग लखनऊ थी, नवाबों का शहर लखनऊ। तो वहां मेरी डायरेक्टर से बात हुई तो डायरेक्टर ने कहा कि देखिए सुभाष जी, सिलेक्शन आपका ड्रामे में हुआ एज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, लेकिन ड्रामे में तो हमारे दूसरे कर रहे हैं, तो आप ऐसे घूमिए कुछ दिन, उसके बाद देखते हैं। तो मैं घूमता घूमता न्यूज रूम था वहां पर, वहां चला गया और वहां पर जब मैंने देखा तो मेरे लिए हर चीज नई थी, क्योंकि हम ड्रामे में हर चीज बहुत प्लान से और रिहर्सल के साथ करते हैं, लेकिन न्यूज में रिहर्सल का टाइम नहीं होता। तो मैं बड़ा शॉर्टकट आपको बताता हूँ, 2-4 दिन मैंने देखा जाकर पैनल पर, तीन चार हमारे कैमरे होते थे, वीएम अलग होता था, ऑडियो अलग होता था, ग्राफिक्स के अलग इनपुट्स होते थे, तो कुल मिला

0: आके शॉर्टकट 10-15 के करीब जो है लाइव इनपुट्स यूज होते थे एक बुलेटिन में जो लाइव जाता था।
1: क्या बात है,
0: तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो एक दिन वो जो प्रोड्यूसर करते थे वो आए नहीं, तो हमारे जो संपादक थे उन्होंने कहा कि सुभाष जी आप कीजिए। अरे मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप बुलेटिन खराब कर रहे हैं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बोला नहीं मैं आपको देख रहा हूँ 3-4-5 दिन से, आप बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेट्स ट्राई। मैंने कहा जिम्मेवारी आपकी होगी, अगर कुछ गलती हुई तो मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी। बोले नहीं नहीं मेरी होगी, आप कीजिए। तो खैर उन्होंने मुझे कहा और मैंने जाके किया, और वो बुलेटिन न्यूज बुलेटिन लखनऊ से वाकई बहुत अच्छा चला गया।
1: जी जी,
0: बस उससे मेरे न्यूज चिपक गया और वो लंबे वक्त तक चला मेरे साथ। तो मैं वैसे बीच बीच में दूरदर्शन के लिए ड्रामे करता रहा और मैंने डांस प्रोग्राम भी किया, वो मुझे स्पेशल असाइनमेंट होती थी। जैसे सोनल मानसिंह जी का मैंने एक डांस का परफॉर्मेंस था उनका,
1: अच्छा?
0: वो मैंने स्टूडियो में किया और मुझे जो हमारे चेयरमैन थे उन्होंने अप्रिशिएशन लेटर दिया और वो बहुत ही बढ़िया गया। ये मैं करता रहा लेकिन स्पेशल असाइनमेंट की मैंने, मेन में जुड़ा रहा सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन न्यूज से।
1: जी, तो हम चूंकि बात करने वाले हैं आपकी और भी जो फील्ड से उस पर भी, लेकिन अभी बात चल रही है आपकी दूरदर्शन की, उसके न्यूज चैनल से जुड़े रहने की। सुभाष जी, आजकल टीवी चैनल्स की अगर हम बात करें, प्राइवेट टीवी चैनल्स जितने भी हैं, वो अपने को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ में या टीआरपी के चक्कर में किसी भी खबर की सच्चाई जाने बिना बड़ा चढ़ाकर बात कहते हैं और एक अजीब किस्म की सनसनी फैला देते हैं। तो इस तरह के समाचारों की सार्थकता पर सवाल तो उठना ही चाहिए, आप क्या सोचते हैं? और आप जिस चैनल पे काम करके निकले वहां सच्चाई को कितना रखा जाता था या सच्चाई कितनी खरी उतरती थी, इस पर हम जानना चाहते हैं।
0: देखिए अगर मैं आजकल के न्यूज चैनल की बात करूं तो मुझे मैं पहले बहुत न्यूज देखता था, आज मैं न्यूज देखता हूं तो मुझे अंदर से दुख होता
1: है। फेडअप से हो जाते हैं हम।
0: फेडअप के अलावा मुझे लगता है कि यार ये न्यूज नहीं है, क्योंकि न्यूज का, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट भी रहा हूं, न्यूज में क्या होता है कि जो आपका एंकर होता है उसको अपने व्यूज जो है वो 10% मैक्सिमम 15-20% देने चाहिए, यानी 20% से ज्यादा उनको अपने व्यूज नहीं देने चाहिए, और बाकी जो आपके गेस्ट होते हैं या न्यूज होती है 80% जो है वो आपको वो बतानी चाहिए, वो दिखाना चाहिए। लेकिन प्राइवेट न्यूज चैनल में बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये उल्टा हो गया है। एंकर जो है वो अपने आप को गेस्ट भी समझते हैं, एक्सपर्ट भी समझते हैं, एंकर तो होते ही हैं, तो वो पता चल रहा है 80% यानी कि 80%
1: वो खुद ही बोल देते हैं
0: हर चीज के, और जो गेस्ट होते हैं आपके जिनको आप बुलाते हैं
1: उन्हें बोलने भी नहीं दिया जाता।
0: तो ये अनफॉर्चुनेट है लेकिन है। और जहां तक हमारे दूरदर्शन की बात रही,
1: आपने डीडी न्यूज और नेशनल न्यूज को कवर किया है।
0: जी, मैंने डीडी न्यूज में किया और मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हूं कि मैंने दूरदर्शन को छोड़ने से पहले 10 या 15 सालों तक मैं प्राइम मिनिस्टर्स की मोर देन 90% कवरेज मैं करता था।
1: क्या बात है।
0: जी, और हमारे चाहे वो नरसिम्हा राव जी हो या मनमोहन सिंह जी हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी हो और हमारे जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी हो, तो उनकी एक अलग चैलेंज होता है क्योंकि लाइव टेलीकास्ट होता है और आपके पास प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि इस तरह की बड़ी रिकॉर्डिंग में आप चाहे प्रेसिडेंट की करें या प्राइम मिनिस्टर की, मैंने प्रेसिडेंट्स की बहुत रिकॉर्डिंग की और वीवीआईपीस की, वहां किसी को पता नहीं चलता है, बाहर वालों को, वहां प्रेशर ये होता है कि वहां जीरो एरर चाहिए, वहां गलती की कोई किसी तरह की गुंजाइश नहीं होती।
1: जी, बिल्कुल।
0: तो बड़ा मजा आता था लाइव वहां पे। तो अभी सोर्सेज बहुत हो गए थे हमारे पास, इतने ग्राफिक के सोर्सेज होते थे, पता चल रहा है कि फिर हम लाइव ओबी पे जाते थे और उसके बाद हमारे जो कॉरेस्पोंडेंट्स होते थे वो खड़े रहते थे 4-4, 5-5, 6-6 जगह
1: सवाल जवाब करने के लिए।
0: और मैंने जो सबसे बड़ी एक प्रोडक्शन की, मैंने नमस्ते ट्रम्प जो अहमदाबाद से हुआ था, गांधीनगर से जब आए थे वो, तो हमने यूज किए थे तकरीबन मोर देन 100 कैमराज लाइव।
1: क्या बात है।
0: जी तो वो कवरेज जो है वो हमने की और मैं वहां एज प्रोड्यूसर भी था और नेचुरली उस टाइम

0: हेड ऑफ द प्रोग्राम था डीडी न्यूज और डीडी इंडिया का, तो उसमें करके एक बड़ा मजा आया। और दूरदर्शन की न्यूज में हम कभी भी ऐसा नहीं करते थे कि जिसके अंदर आपको प्रॉपर न्यूज ना मिले,
1: केवल सनसनी को
0: फैलाना कम से कम उस वक्त पे दूरदर्शन का काम नहीं था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूज लोग बाग सुनना चाहते हैं,
1: और इसीलिए सुभाष जी रेडियो की न्यूज हो या दूरदर्शन की न्यूज हो, आज भी उनकी सत्यता पर आंच नहीं आई है
0: जी।
1: आज भी उन्हें ऑथेंटिक माना जाता है और लोग रेडियो की न्यूज सुनना या दूरदर्शन की न्यूज देखना पसंद करते हैं
0: जी।

आप सुन रहे थे मीडिया प्रोफेशनल और फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी का और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दोस्तों आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं आतिश की लिखी झलकी, लो कर लो दर्शन। निर्देशक हर्षवर्धन गवई।
1: अच्छा सीधा रानी, नहीं वो बात सही है आपकी, लेकिन
2: मैं भी वही कह रहा था।
1: हाँ आप तो सही कह रहे थे, लेकिन ये अरे ये जोगिंदर सिंह जी कैसे अस्त व्यस्त से चले।

0: जा रहे हैं।
1: लगते तो वही है। एक मिनट, अरे जोगिंदर सिंह जी, ओ जोगिंदर सिंह जी, सरदार जी,
2: ओ जी,
1: अरे क्या क्या झटका खाया है क्या आपने? कहाँ चले जा रहे हैं घबराए से?
2: और क्या बताऊं सीताराम जी, शुक्र करो कि मैं जिंदा हूँ।
3: क्यों, क्या हो गया?
1: क्या हो गया?
2: अरे यार, खबर तो पढ़ी होगी आपने, टीवी पर देखी और सुनी भी होगी। हमारे पड़ोस में जो 6 मंजिला इमारत बनी थी ना, अचानक गिर पड़ी।
3: ओ जी, अरे रे रे, अरे रे रे,
2: हाँ जी।
3: अच्छा फिर तो उससे आपका क्या ताल्लुक?
2: ओ यार, हम लोग जहाँ चाय पीते हैं ना, मैं उसी के नीचे खड़ा चाय की दुकान से चाय पी रहा था।
1: हुआ क्या?
2: बस सिर्फ 1 मिनट पहले चाय पीकर वहाँ से बमुश्किल 100 कदम आगे बढ़ा हूँ।

0: उससे आपका क्या ताल्लुक?
1: ओ यार, हम लोग जहाँ चाय पीते हैं ना, मैं उसी के नीचे खड़ा चाय की दुकान से चाय पी रहा था।
2: हुआ क्या?
1: बस सिर्फ 1 मिनट पहले चाय पीकर वहाँ से बमुश्किल 100 कदम आगे बढ़ा हूँगा कि पीछे से जोर से धड़ाम की आवाज आई। मुड़कर देखा तो बिल्डिंग गिर गई थी।
2: अच्छा,
1: हाहाकार मच गई। मलबे के नीचे दबकर 30 लोगों की मौत हो गई। बस 1 मिनट का फर्क है, अगर मैं वहां से ना हटा होता ना, मैं भी ऊपर वाले के पास पहुंच गया होता।
2: ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, बड़ी बुरी खबर है।
1: भला हो भाई गुरु का, उसने ऐन वक्त पर मुझे बचा लिया।
2: सचमुच जाको राखे साइया सरदार जी, मार सके ना कोई।
1: ओए जिसनू राखे रब तो उसनू चखे कौन।
0: क्या रब ने बचा लिया है? और वो जो 30 बेगुना मलबे के नीचे दबकर मर गए, उन्होंने रब का क्या बिगाड़ा था?
2: लेकिन राम गोपाल जी,
0: अरे सच्चाई ये है सीताराम जी कि वो बिल्डिंग अनऑथराइज थी।
2: अच्छा,
0: उसकी कंस्ट्रक्शन में भी घटिया माल का इस्तेमाल किया गया था। सीमेंट की जगह रेत खूब ज्यादा इस्तेमाल की गई थी। जाहिर है कि अथॉरिटीज के साथ मिलकर रिश्वतखोरी की गई, मोटी मोटी रकम ऊपर से नीचे तक बहाई गई और बिल्डिंग बनने दी गई।
1: और जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी।
2: क्या बताएं सरदार जी, क्या माहौल हो गया है। इस भ्रष्टाचार ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे माहौल का।
0: तो फिर रब ने इन भ्रष्टाचारियों को सजा क्यों नहीं दी? वो तो सब देख रहा है ना, सब जानता है ना। और यही नहीं है जो जोगिंदर सिंह जी के घर के बाजू में हुआ है।
2: तो
0: एक और बुरी खबर है।
2: वो क्या है?
0: एक अनऑथराइज रेस्टोरेंट में आग लगने से वहां जन्मदिन मना रही एक लड़की और उसके साथी जलकर मर गए। जानते हो 20-22 साल के 14 बच्चे मारे गए।
2: माय गॉड।
1: हाँ जी, ये सही कह रहे हैं।
2: बड़ी दिल दहलाने वाली खबर है सरदार जी।
0: अरे वहां भी तो बेचारे लोग खामखा ही मारे गए ना। अब क्यों नहीं जला डाला उन सभी गुनाहगारों को तुम्हारे रब ने? क्यों नहीं मार दिया उनको? क्या अजीब मजाक है। जो बेगुनाह हादसों में मारे जाते हैं उनके बारे में बस एक ही राय है, अजी साहब उनकी तो मौत आ गई थी, अजी साहब उनकी तो किस्मत में बस इतनी ही जिंदगी लिखी थी। और जो हमारे सरदार जी जैसे बच जाते हैं, उसका सारा का सारा क्रेडिट भगवान को चला जाता है।
2: लेकिन यही तो कहा जाता
0: अरे
2: है।
0: क्या कहा जाता है? आप सीताराम जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आप भगवान को क्रेडिट दे देते हैं, कभी रब को क्रेडिट दे देते हैं। एक और कमाल की सोच है, कमाल का विश्वास है। जो किया वो रब ने किया, जो दिया वो रब ने दिया। अरे साहब देखिए, हम भी पैदा हुए हैं, अपने माँ बाप की औलाद हैं, हमारी भी औलादें हैं। जिसको देखो वो सारा क्रेडिट रब को दिया जा रहा है। सब क्या उसी की मेहरबानी है? बताइए सरदार जी, चुप क्यों हैं? क्या गलत कह रहा हूं मैं?
1: आप तो नास्तिक हो, आप तो ऐसा ही कहेंगे।
0: अरे सीताराम जी, भगवान ईश्वर गॉड रब सब एक विश्वास है जो आस्था बन गया है। गॉड यानी रब ने इंसान को बनाया या नहीं बनाया ये तो नहीं जानता मैं, लेकिन ये कभी ना झुठलाने वाला सच है कि ये इंसान है जिसने रब को बनाया। इंसान के बिना रब को जानता ही कौन है, बताइए आप। ये जो जानवर हैं, ये भी तो रब के बनाए हुए हैं ना। ये किसी भी धर्म स्थान के अंदर चले जाते हैं, आराम से लघु शंका से निवृत्त हो जाते हैं, गोबर कर देते हैं। भगवान होता तो ऐसा करते ये कभी?
3: यही तो फर्क है नास्तिक जी, इंसान और जानवर में। जानवर को दिमाग नहीं दिया भगवान ने, इंसान को दिया है सोचने और समझने के लिए।
1: ओए भगवान दास, बहुत देर के बाद आए हो, कितने सी तू?
3: मैं भगवान के साथ क्रिकेट खेल रहा था।
2: क्या बात कर रहे हैं भगवान दास जी, है कोई दूसरा भगवान भी तेरे नाम जैसा?
3: मेरे नाम जैसा नहीं, सचमुच का भगवान जिसे तुम ईश्वर कहते हो, रब कहते हो, वो मेरा दोस्त है। मेरे साथ क्रिकेट भी खेलता है और शतरंज भी खेलता है।
0: पेंकू चंद है ये हमारा दोस्त जो है ना, ये भगवान दास नहीं पेंकू चंद है, फेंक रहा है। अरे भला जो दिखता ही नहीं उसकी हकीकत क्या? ढकोसला है सब, रब गॉड। अरे तुम दिख रहे हो, मैं दिख रहा हूँ, सीताराम जी दिख रहे हैं, सरदार जी दिख रहे हैं। कहाँ है तेरा रब बता दो, कहाँ? दिखा जरा मुझे, दिखा भाई।
3: वो सर्वव्यापक है ना, तुम्हारे सामने

0: इसी वक्त मौजूद है, मगर तुम जैसे नास्तिक को दिखाई नहीं देगा।
1: चलो मैं मान लेता हूँ मैं नास्तिक हूँ। ये हमारे सरदार जी तो आस्तिक है ना, ये सीताराम जी तो आस्तिक है ना। भैया आपको दिख रहा है आ? तुमको दिख रहा है?
2: नहीं दिख रहा है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: दो अब जवाब, है कोई जवाब?
0: ये हवा है ना, इसी में हम सब सांस ले रहे हैं।
1: हाँ
0: तुम भी हाँ? क्या दिखाई देती है किसी को? जिंदगी क्या है? जब तक सांस लेते रहोगे जिंदा रहोगे, सांस बंद जिंदगी खत्म। मैं भगवान का दास हूं इसीलिए वो मेरा दोस्त है। मैं तो जब भी बुलाऊं वो ओब्लाइज करता है, दर्शन देने आ जाता है।
2: क्या बात कर रहे हैं भगवान दास, हमें भी दर्शन करवा दो भाई।
3: ओ हाँ यार, सानू भी करवा दे दर्शन।
0: चलो ठीक है, तो इस संडे को आ जाओ मेरे घर पे, मैं विनती करके बुला लूंगा रब जी को, आप दर्शन कर लीजिए।
2: ठीक है जी, आ जाएंगे। क्यों सरदार जी?
3: बिल्कुल आ जाएंगे जी।
1: भैया मुझे तो बख्श दो।
2: क्या बात कर रहे हो,
1: मुझे
2: चलिए,
1: नहीं।
2: आप भी चलिए।
1: नहीं, नहीं नहीं
0: ना ही आओ तो अच्छा है।
1: हाँ
0: भगवान की भी यही इच्छा है,
1: बस आप लोग दर्शन कर लो जी।
0: तो आ जाना आप दोनों हाँ मेरे घर।
3: अच्छा जी, सत श्री अकाल।
2: राम राम भगवान दास, जरूर आएंगे।
3: ओ जी सत श्री अकाल जी।
2: भाई भगवान दास, राम राम।
0: आइए आइए, आ गए आप। मगर ये क्या, साथ में इतनी भीड़ ले आए।
2: अब क्या करें, जिसने भी सुना दौड़ा चला आया, हमें भी दर्शन करवा दो, हमें भी दर्शन करने हैं, साथ ले चलो।
0: चलो भाई, ओके, ऐसा करते हैं, वहाँ दूर एक लाइन में खड़े हो जाओ सब लोग, एक एक करके आना।
2: ठीक है।
0: अंदर कमरे में भगवान जी हाजिर है, कर लो दर्शन।
2: सरदार जी आप एक काम करो, आप लाइन लगवाओ, सबसे पहले मैं दर्शन करूंगा जी, और दूसरी बारी आपकी आ जाएगी, लाइन लगवाओ।
3: ओ अच्छा जी, ओ ठीक है जी, मैं जाता हूँ लाइन लगवाता हूँ, छेती छेती आप भी आ जाना, पहले दर्शन मेरे होंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाओ लाइन लगवाओ। तो भगवान दास जी अब मैं जाऊँ भीतर दर्शन करने?
0: हाँ हाँ, मगर एक शर्त है।
2: शर्त वर्त यहाँ पर?
0: भगवान सिर्फ उसी को दिखाई देंगे जिसने कभी झूठ ना बोला हो।
2: जी झूठ से मेरा क्या नाता, कोसों तक कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो केवल सच ही बोलता हूँ जब भी बोलता हूँ।
0: जिसने पाप ना किया हो।
2: ओ हो हो, मैं तो पुण्य का भागी हूँ, और पुण्य भी ऐसे करता हूँ कि इस हाथ का उस हाथ को पता नहीं चलता।
0: और जिसने किसी को धोखा ना दिया।
2: हम क्यों धोखा वोखा देंगे, और भी कोई शर्तें हैं आपकी?
0: जिसने रिश्वत ना ली हो ना दी हो।
2: रिश्वत से अपना दूर दूर का कोई नाता ही नहीं है।
0: किसी लड़की पर बुरी नजर ना डाली हो।
2: हम क्यों नजर डालेंगे, अब बताइए कितनी शर्तें और बाकी हैं आपकी?
0: और जिसने किसी पराई स्त्री को कभी ताका झांका ना हो।
2: अरे भाई क्यों जागेंगे ताकेंगे किसी पराई स्त्री को, और भी कोई शर्त है, भीतर जाऊं दर्शन करने?
0: जाओ अंदर जाओ, दर्शन कर लो।
2: ठीक है, ये चला।
0: क्यों जी सीताराम जी, मिल लिए भगवान को, हो गए दर्शन रब के?
2: दर्शन? अरे भगवान दास जी दर्शन की बात करते हो, हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए, विराट प्रभु का स्वरूप, ओ हो हो हो हो हो, आत्मा प्रसन्न हो गई, क्या साक्षात दर्शन दिए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु।
0: इसी तरह सरदार जी ने भी दर्शन लिए, और जो भी आया था सभी ने यही कहा कि उसे भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों हंस रहा हूं। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि ऊपर बैठा भगवान भी हंस रहा है।
4: लो कर लो दर्शन। अभी आप सुन रहे थे आतिश की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे हर्षवर्धन गवई। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अमरकांत दुबे, अशोक सोनावने, राजेंद्र त्रिपाठी और जयंत पात्रिकर। ये थी विविध भारती मुंबई की प्रस्तुति।

0: थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना वासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: उनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे चित्रलोक।

बर्फी फिल्म का गाना निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज थी। स्वरण किरकिरे के बोल प्रीतम की तर्ज थी। रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजें प्रसून जोशी के बोल। संगीत ए आर रहमान का।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रूपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। ICC क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और FIFA फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को

0: मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: Partnership with UK is taking many more dimensions.
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
1: In a fair and equitable manner.
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी या तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं रिक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई एक रिपोर्ट
3: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत

0: और बचाव अभियान चला रहा है। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेज़न के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेज़न के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्यत्व के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
2: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि

0: उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड 19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुनिए कार्यक्रम आपके लिए।

0: कानपुरी का लिखा बप्पी लहरी का स्वर प्रति किया ये जख्मी फिल्म का गाना था।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हम वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन
2: कौन लाया, कौन लाया।
3: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
4: परेशान हूं मैं।
3: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
5: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
3: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
5: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
3: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कर और सुरेश वाडकर की आवाजों में ये वारिस फिल्म का पहला था। गर्व मलिक के बोल थे, संगीत उत्तम जगदीश का था। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश बेताब फिल्म का गाना।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम बोल रहे हैं विविध भारती से। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

आने के बाद मदन मोहन, श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत,

न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूंगा क्योंकि इट बी इजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे, तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफी याद हैं, लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है, लेकिन उन्हें जरूर लगा। और इसकी वजह भी है, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों। फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
2: जी मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है ये, उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रियाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूं। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूं और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1,000 रूपये मांगना चाहता हूं, इस खबर के लिए आप मुझे 1,000 रूपये दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैं देखा कि कोने में रफी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहां, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला।

0: वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूं। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी और उन्होंने कहा, मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
1: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था और दस्तक 1970 में, मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी, जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था, वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ एकदम जे सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे कहा छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज चलाओ तेज चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माताजी जो साथे बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए। उन्होंने कहा मदन जी, मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नजरों ने समझा गाना जो सुना है का माल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब प्रयोग किया।

सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम। जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

चैन। रूठना मनाना ये तो प्यार का ही रूप है। शायद वो रूठकर हक जताते हैं और हम मनाकर प्रेम। वो रूठते हैं तो उदास नहीं, प्यारे लगते हैं, और हम मनाते हैं तो बेसहारा लगते हैं। और सहारा देने को वो मान भी जाते हैं और फिर प्रेम अपना कुछ यूं दिखाते हैं।

यूं खामोशियों की ओट में खुद को छुपाइए, मेरी आंखों की बेचैनी जरा आकर पड़ जाइए। खता मुझसे हुई होगी मगर इतनी सजा कैसी, गिले शिकवे सभी रखिए मगर कुछ तो सुनाइए।

हम जानते हैं वो दूर जा रहे हैं, पर मन से नहीं, बस इतरा रहे हैं। बुरा तो लगा था हमारी बातों का उन्हें, पर अब लगता है बस यूं ही वो भाव खा रहे हैं। इसीलिए हमारी कलम ने लिखा कि चलो अब मुस्कुरा दो, ये गुस्सा छोड़ भी दो, मेरी खातिर अपनी जिद का रिश्ता तोड़ भी दो। जानती हूं ये रूठना बस बहाना है तुम्हारा, मुझसे और थोड़ा प्यार जताना है तुम्हारा।

आज समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,

अंतराल के बाद पुनः स्वागत है कार्यक्रम छाया गीत में। हम बात कर रहे हैं रूठने की और मनाने की। और अगर प्रेयसी रूठ जाए और कारण पता ना हो तो, पर मनाना तो जरूरी होता है ना, और मनाने के लिए थोड़ी सी जरूरत तो की जा सकती है और थोड़ी सी मेहनत भी। तो कहती है कलम की, तेरी खामोशियों में भी सदाएं सुन रहा हूँ मैं, तेरे रुखसार पर ठहरी दुआएं चुन रहा हूँ मैं, जो तेरी आंखें बरसों से कह ना पाई मुझसे, उन्हीं अनकही बातों के अफसाने बुन रहा हूँ मैं।

किसी के रूठने से दिल तड़प जाता है, उसको मनाने के लिए भी दिल रह ही जाता है। रूठने मनाने के सिलसिले में कई सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और प्यार और मुस्कुराता है। कभी कभी रूठे दिल को देखकर तड़पन और मुस्कुराते देखकर मन की खुशी दोनों ही बड़ी खूबसूरत होती है। कहती है कलम कि मैं आपके नाम की खुशबू लिए फिरती हूँ सांसों में, मेरे एहसास की दुनिया में फिर से मुस्कुराइए। न जीत मेरी न आपकी मोहब्बत की हो बस, चलिए अब मान भी जाइए और मुझे गले लगाइए।

रूठना इजाजत देता है और करीब आने की, और ये मनाना इजाजत देता है फिर से मुस्कुराने की। ये रूठने मनाने के शिकवे के शिकायतों के इन पर्दों को धीरे धीरे हटाकर ही प्रेम का सुंदर रूप दिखाई देता है। रूठना मनाना इसकी भी एक हद होनी चाहिए, एक हद के बाद रूठे हुए को मान भी जाना चाहिए। और बस ऐसे ही जो रूठा है वो रूठ तो सकता है, यह उसका अधिकार है, पर मानना ये भी उसके काम में ही आता है। तो रूठिए पर जल्दी मान जाइए। इसीलिए तो कहा है कलम ने, ये जो रूठे हैं लब आपके, मौसम भी उदास है, बहारों की तरह फिर से मेरे आंगन में आइए। मैं अपने हर तर्क को अब प्रेम में बदल दूंगी, आप बस एक बार दिल से मुझे अपनाइए। नजर झुक झुक के कहती है बहुत कुछ आज भी, लेकिन मेरे अल्फाज से पहले मेरी धड़कन को पाइए। जो बीती बात थी उसको हवाओं में बिखरने दें, नए सपनों की चादर फिर मोहब्बत पर बिछाइए।

अब अगर रूठे तो जल्दी मान जाना, अगर शिकवे हो तो जल्दी से मिटा देना, क्योंकि जीवन मुस्कुराने के लिए है और साथ बिताने के लिए। रूठना मनाना एक पल का हो तो अच्छा है, अगर लंबा चले तो बड़ा दुखदाई। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, रूठे को मनाते रहिए, अगर कोई मनाए तो जल्दी से मानते रहिए। छाया गीत कार्यक्रम में आज इतना ही। अब आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।

0: आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है, मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में। दोनों ही समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच

0: करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिक